0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। भगवत गीता हमें स्वास्थ्य के बारे में भी एक बहुत सुंदर बात बताती है। स्वस्थ शब्द का अर्थ क्या है? स्व में स्थित होना। इसीलिए अगर स्वास्थ्य सही से समझना है तो स्व की परिभाषा को समझना आवश्यक है। भगवत गीता हमें बताती है कि जो हमारा शरीर है ये एक समय बाद समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ये शरीर हम नहीं है, ये केवल एक गाड़ी है और इसके ड्राइवर हम हैं, जो कि आत्मा है। अर्थात कि हम स्व से समझ सकते हैं कि स्व हम आत्मा के प्रकार हैं। सो भगवत गीता हमें बताती है स्वास्थ्य की सही परिभाषा। स्वास्थ्य अर्थात स्व में स्थित होना। स्व में स्थित होने के लिए हमें स्व को जानना बहुत आवश्यक है। स्व अर्थात मैं। अब ये मैं क्या है? अगर मैं को शरीर माने तो एक दिन ये शरीर समाप्त हो जाएगा। मैं को मन बुद्धि माने तब भी जीवन के समाप्त होने पे ये समाप्त हो जाएंगे। परंतु अगर इस स्व को हम आत्मा माने, जो कि कभी जिसका नाश नहीं होता, ऐसी आत्मा सही में स्व है। तो स्व में स्थित होने का अर्थ है कि हम आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य करें, अर्थात कि अपने को जीवन के कर्तव्यों के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक चेतना पर भी कार्य करें। इससे हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, तनाव से मुक्त रहेंगे। हरे कृष्णा।

सुवन शासन भ्राता गौरी लनन विश्व विख्यात सिद्धि सिद्धि वंश वर सुधारे भूषक वाहन सोहक द्वारे।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। भगवत गीता हमें एक बहुत सुंदर बात बताती है कि हमारे जीवन में तनाव आता क्यों है और उससे बच कैसे सकते हैं। तनाव हमारे जीवन में इसलिए आता है क्योंकि हम अपनी प्रकृति के विरुद्ध कार्य करने का प्रयास में लगे रहते हैं। जैसे कि एक मछली से आप कहेंगे पेड़ पे चढ़ जाओ तो उसकी प्रकृति नहीं है। इसीलिए अगर आप प्रकृति के विरुद्ध कार्य करेंगे तो आपके जीवन में तनाव बढ़ेगा, डिप्रेशन एंग्जाइटी बढ़ता चला जाएगा। परंतु जैसे ही आप अपनी प्रकृति में यानी स्वयं को जाने और उसके अनुसार अगर अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करें तो आप तनाव से पूर्ण रूप से मुक्त होकर भी कार्य कर सकते हैं। कितना कार्य? जितना चाहे आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप खुश हैं तो आप हमेशा अपने कार्य को 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे नहीं, जितना चाहे कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: जिस प्रकार एक मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, उसी प्रकार व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है। ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सब सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा और काशी है।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
2: खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए। लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में टटोलते हैं, ये कहना है अज्ञात का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा, सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुनो शारदा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM.
6: सुनो शारदा।
7: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूँ अपने इस खास प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल, बिंदास बातें। बहुत कुछ खास होता है इस कार्यक्रम के माध्यम से। जैसे कि आपको पता है कि जब मैं बिंदास बोल, बिंदास बातें करता हूँ या जिक्र करता हूँ तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं एक खास मेहमान को मैं आमंत्रित कर रहा होता हूँ इस कार्यक्रम में और उनसे जुड़ी हुई बातें हम आप तक पहुंचाते हैं। निश्चित तौर पर जब बातें होंगी तो कहीं ना कहीं म्यूजिक भी होगा, लेकिन जब आपको ये पता चले कि हरफन मौला हमारे साथ कोई शख्स जुड़ रहे हैं तो वाकई प्रोग्राम में चार चांद लग जाते हैं। जी हाँ, पढ़ने पढ़ाने की भी बातें होंगी लेकिन जिंदगी को कैसे जिया जाए ये बातें भी हम आपके साथ साझा करेंगे। म्यूजिक की बातें होंगी और मिमिक्री की बातें होंगी और सिंगिंग की बातें होंगी, तो इस तरीके से यू कहें कि एक पैकेज है हमारे सामने हमारी शख्सियत। मैं ज्यादा आपको इंतजार नहीं कराना चाहूंगा, मेरे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर उमेश सी पाठक जी, जो कि आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज दिल्ली में। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
8: बहुत बहुत धन्यवाद गगन जी।
7: कैसा लग रहा है सर शारदा के इस प्रांगण में आकर आपको?
8: जी मुझे बेहद खुशी है और आपका जो अंदाजे बयां है वो बेहद मुतासिर करने वाला है और मुझे अच्छा लग रहा है कि आपसे इस मुद्दे पे बातचीत करने का एक मौका शारदा रेडियो के अंदर मिल रहा है।
7: थैंक यू सर, ये मेरी खुशनसीबी है कि आपसे मैं मुलाकात कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, बिकॉज क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि पढ़ने पढ़ाने के साथ साथ कुछ मिमिक्री की जब बातें होती हैं, गीत संगीत की बातें होती है, तो ऐसा लगता है कि कोई अपनी सी बात होने वाली है, मजा आने वाला है इस इंटरव्यू में। तो सर, थोड़ा सा मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा कि आप मुझे प्लीज अपने बारे में बताएं कि किस शहर से आप ताल्लुक रखते हैं और यहाँ कैसे आना हुआ।
8: जी, मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में हुआ है, जो भगवान बुद्ध की नगरी कही जाती है। भगवान बुद्ध को वहां पर निर्वाण मिला हुआ है, आज भी महात्मा बुद्ध वहां लेटे हुए हैं और दुनिया भर के बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग वहां आते रहते हैं। हाल ही में वहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बना है
7: जी,
8: और मुझे अच्छा लगता है कि मैं उस धरती से जुड़ा हुआ हूँ। वहां से फिर पढ़ने पढ़ाने का तरीका जो आपने कहा कि उसको देखते हुए मुझे शहर दर शहर भटकना पड़ा, और लेकिन मुझे शहर अच्छे मिले, जगह अच्छी मिली। वहां से फिर मैं बनारस गया और गोरखपुर होते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और वहां से पीएचडी तक की जो मेरी शिक्षा हुई है मास कम्युनिकेशन में वो पूरी हुई। तो बहुत कुछ सीखने को मिला। बनारस वैसे भी कहते हैं कि शहर एक अलहदा किस्म का है, तो बहुत सारी चीजें मैंने वहां कोशिश की सीखने की, जिसमें से म्यूजिक भी एक है और बहुत और भी बातें हैं।
7: जैसे कि आप हमें बता भी रहे थे और मैंने अभी आपका एक गाना भी सुना, माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने गाया है, गुनगुनाया है, उसके बारे में भी बातें करेंगे जरूर। तो इस क्षेत्र में आप मुझे बताएं कि ये जो स्टडी का क्षेत्र है, अध्ययन का क्षेत्र है, पठन पाठन का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आप कितने सालों से काम कर रहे हैं?
8: पिछले 15 वर्ष से मैं गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के महाराजा अग्रसेन संस्थान और कुछ और अन्य संस्थानों में पहले
9: जुड़े रहे
8: जुड़ा रहा हूँ और अभी भी जुड़ा हुआ हूँ। और मीडिया के विद्यार्थियों को पढ़ने पढ़ाने का मैं पढ़ना ही कहूंगा, पढ़ाना तो मुझे लगता है कि बड़ी चीज है जो हमारे गुरुओं को आती थी।
9: अरे क्या,
8: हम कोशिश बस ये करते हैं कि कुछ कर सकें। वैसे भी मेरा ये अपना मानना है कि एजुकेशन का जो पर्पज है दैट इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड थॉट, नॉट टू इम्पोज ओन थॉट ऑन अदर्स। तो ये सीखना हर एक से हो सकता है। और ऋग्वेद की एक बहुत अच्छी सूक्ति है, ये अनुभद्रा कृतो यन्तु विश्वतः, लेट अस नोबल थॉट्स कम फ्रॉम एवरीवेयर। और वी हैव बीन वेलकमिंग ऑल गुड थॉट्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, दैट्स व्हाई इंडिया इज स्टिल सर्वाइविंग एंड इन अ विन विन सिचुएशन अक्रॉस द वर्ल्ड।
9: नाइस नाइस। चलिए सर, आपसे बातचीत का जो सिलसिला है वाकई बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक मैं लेना चाह रहा हूँ और मैं ये चाह रहा हूँ, ये छोटी सी आपसे एक इल्तजा करूंगा कि अगर आपके अंदाज में कोई गाना हो जाए, क्योंकि आप मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं, सिंगर्स की बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं, तो उसी अंदाज में हम ब्रेक पर जाना चाहेंगे।
10: मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं उड़ा
9: चला गया। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गाना। देवानंद साहब पर यह गाना फिल्माया गया है, सिंगर आई थिंक रफी साहब है।
8: जी रफी साहब,
9: रफी साहब क्या बात है, मैं भी सही पकड़ा हूँ। तो लिसनर्स, इस गाने को गाते हैं, गुनगुनाते हैं, सुनते हैं और सुनाते हैं। सच बात तो यह है कि जिंदगी में जितनी भी दिक्कत परेशानियां आती हैं, उन परेशानियों का अच्छी तरीके से सामना करिए, और जब हम अच्छी तरीके से सामना करते हैं तो निश्चित तौर पर उसके जो परिणाम है वो सुखद होते हैं। एक ब्यूटीफुल ट्रैक, वो ब्यूटीफुल सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। और स्टूडियो में आज मेरे साथ एक खास मेहमान हैं, जो हैं डॉक्टर उमेश सी पाठक जी, एसोसिएट प्रोफेसर महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी दिल्ली से। सो सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: चूंकि जिस फील्ड से आप आते हैं, ये जानना समझना मेरे लिए भी बहुत जरूरी है कि जब आप पढ़ाई करते थे, आज आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, वो एक अलग बात है। आपने बहुत सादगी से अपनी बात रखी कि हम खुद सीख रहे हैं, सीखते समझते इंसान आगे बढ़ता है। कैसा लगता है कि कितना फासला आ गया है, कितना अंतर महसूस आप करते हैं उस समय की पढ़ाई में, आज की पढ़ाई में, या जो एक अदब का माहौल होता है, गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है, उसमें कितना अंतर महसूस करते हैं? दो बार
1: देखिए, फर्क तो जरूर है और हर दौर में होता है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। और आज भी मुझे लगता है कि जो अच्छाइयां हैं वो मौजूद हैं और बुराइयां भी रहती हैं। गुड एंड एविल्स आर एवरीवेयर, इवन विद इन अस, वी विल हैव टू एक्सेप्ट एज इट इज। और स्टूडेंट के तौर पे, शिष्य के रूप में जो मेरे सामने आता है, मैं उसको वैसे ही स्वीकार करता हूँ। जो मेरे पास आ गया वो रावण राम सब मेरे हैं और उनका ख्याल करना मेरा काम है। और जहां तक सीखने का बात है, तो रामानाथ अवस्थी की पंक्तियां हैं कि कौन यहाँ पर किसे पूछता, दुनिया है यानी जानी, पानी ढूंढ रहा प्यासे को, प्यासा ढूंढ रहा पानी। इफ यू हैव वर्दिनेस दैट विल रिफ्लेक्ट। तो पानी ढूंढ रहा प्यासे को, प्यासा ढूंढ रहा पानी, पानी है तो बरसेगा ही, पानी है तो बरसेगा ही, आंख में हो या बादल में, चंदन है तो महकेगा ही, आग में हो या आंचल में।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत।
1: बहुत तो जिस बच्चे को जो करना है वो कर ही लेता है। और आई कैन प्राउडली से दैट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर शाइनिंग इन मीडिया इंडस्ट्री, माई ओन स्टूडेंट्स, सो मेकिंग अस प्राउड।
0: वाकई खुशी होती है
1: जी।
0: उन स्टूडेंट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो एक पक्ष आपने हमारे सामने रख दिया। जो लोग आते तो हैं चकाचौंध को देखकर, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो कर गए, जिनका हम नाम ले लेते हैं, उंगली पर हम नाम गिना सकते हैं, लेकिन उन स्टूडेंट्स के बारे में हम क्या कहें जो अदब नहीं है, सीखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते? आपको सुख सुविधाएं मिली हुई हैं सीखने के लिए, आपके पास एक रेडियो एफएम है या एक कॉलेज का यूट्यूब चैनल है, उनको लगता है कि नहीं, ये छोटा स्टेशन है, बड़े स्टेशन से जाकर मुझे अपनी इंटर्नशिप करनी है, तो वो जो सोच है, उस सोच के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: उसके बारे में सर, अगेन मैं आपको एक छोटी सी पंक्ति दूंगा जिसमें सब कुछ है। अश्विनी कुमार अशरफ की पंक्ति है कि शक्लें क्या तू गढ़ने चला है, हुस्न नजर पहले पैदा कर। शक्लें क्या तू गढ़ने चला है, हुस्न नजर पहले पैदा कर, सोच से ढलती है शख्सियत, छोटी बातें मत सोचा कर।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। सो लिसनर्स, मुझे लगता है कि इस बात का सार अगर आपने जान लिया, समझ लिया, जो सोच है, जिस सोच के साथ आप चल रहे, तो निश्चित तौर पर आपको कोई रोकेगा नहीं और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। और कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हुआ करती, लहरों से डरकर नौका कभी पार हुआ नहीं करती। तो आप प्रयास करिए, सीखिए, समझिए, और जब आप सीखेंगे समझेंगे तो निश्चित तौर पर हर कोई आपसे बात करना चाहेगा, आपके गुरुजन भी आपका नाम लेना चाहेंगे कि वो फला स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाया था, आज वो इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, आज उसे लोग मिलना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं। चलिए, ये तो पढ़ने पढ़ाने की बात रही, तो सर कोई एक और गाना, क्योंकि आपके पास मिमिक्री का बहुत अथाह भंडार है और आप बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं, तो कोई और दूसरे सिंगर जिनको आप यहाँ लेकर आना चाहेंगे और उनको हम गाने की तरफ लेकर जाना चाहेंगे?
1: देखिए, मेरा जो रुझान है वो पुराने गानों में बहुत रहा है और
0: बड़े अच्छे
1: गाने। एसडी बर्मन साहब, सचिन दा को मैं बहुत पसंद करता हूँ, उनका एक गाना मैं मिमिक करने की कोशिश कर रहा हूँ।
0: प्लीज प्लीज।

0: मांझी।
1: बहुत खूबसूरत, तालियां बनती है सर, तालियां बनती है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आपने उनको कॉपी किया। और जब इस तरीके से गानों को जब हम सुनते हैं तो पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं, उन गानों में हम खो जाते हैं, वो मांझी, वो गाने के शब्द, वो संगीत आजकल कहीं ना कहीं खो गया है। फिलहाल इस गाने में हम खोने की कोशिश करते हैं, यानी कि इस गाने को गाते हैं, गुनगुनाते हैं। सो इस ब्यूटीफुल ट्रैक को आप सुनिए सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 एफएम पर। मैं हूं गगन, मेरे साथ स्टूडियो में खास मेहमान है डॉक्टर उमेश सी पाठक जी, जो कि बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, और सबसे खास बात यह है कि इस दुनिया को अपने आसपास रखते हैं। जब आप म्यूजिक को रखते हैं अपने आसपास, म्यूजिक को जीने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो इंसान हमेशा खुश रहेगा ही रहेगा और दूसरों को खुश रखेगा। अभी हम ऑफ एयर बात कर रहे थे तो वाकई बहुत अच्छा लग रहा था सर से बात कर। जब हम ऑन एयर बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर अब आप खुद जज करिए कि कितना अच्छा साक्षात्कार हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। फिलहाल एक ब्यूटीफुल ट्रैक आपके लिए सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 एफएम पर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन।
2: मेरे माझी, ओ, ओ, मेरे माझी।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी को जीने की बातें करते हैं, खुश रहने की बातें करते हैं, और सच बात तो यह है कि जिंदगी को जब आप जीते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं कोई दिक्कत परेशानी होती ही नहीं है। ये सच है कि जिंदगी में तमाम दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, लेकिन एक म्यूजिक की वजह से, खुश मिजाजी की वजह से आप जिंदगी को आगे लेकर जा सकते हैं। कहते ना कि टेंशन बहुत ज्यादा है, हर कोई परेशान है, लेकिन जब आप आत्मबल आपका मजबूत है, सोच आपकी मजबूत है, उड़ान बहुत अच्छी है, तो उसके जो परिणाम है, ये सच है कि सुखद परिणाम आते हैं और कोई भी बीमारी आपको लगती ही नहीं। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। तो सर, ये जो खुश मिजाजी का यूं कहूं कि गुरु मंत्र है आपके पास, आप कैसे खुश रहते हैं, लोगों को खुश रखते हैं, तो कैसा लगता है जब आप लोगों के बीच में जाते हैं और कहते हैं कि सर एक गाना गाइए ना, गुनगुनाइए ना, या स्टेज परफॉर्मेंस होने वाली है, अरे पाठक सर को बुलाओ ना, उनकी परफॉर्मेंस हम यहाँ करवाएंगे, कैसा फील होता है उस वक्त?
1: ये अक्सर होता है, और मैं क्या, कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा प्रिविलेज महसूस करता है, और अच्छा तब लगता है कि जब सच में लोग उसको पसंद करें और आपको कहीं ना कहीं से तारीफ मिलना, सबको अच्छा लगता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि गाना कुछ ऐसा हो कि हमारे जो आज की पीढ़ी के लोग हैं उनको कुछ मैसेज मिले, कुछ मीनिंग हो उसमें, कुछ जीवन हो, क्योंकि जिंदगी के जो सारे रूप हैं वो भारतीय संगीत में मिल जाते हैं। खासतौर से पुराने गानों का जिक्र करें तो उनके लिटरेचर में बड़े मीनिंग है, बड़े मायने हैं।
0: सही कर।
1: तो मेरी कोशिश ये होती है कि कुछ मीनिंग उसमें से अपने लोगों के साथ बांटा जा सके।
0: नाइस। बहुत कठिन काम है किसी को कॉपी करना, क्योंकि मैं भी मिमिक्री करता रहता हूं और गले पे बहुत जोर पड़ता है। एक दिन में कुछ भी हासिल नहीं होता किसी सिंगर को। जब आप कॉपी कर रहे हैं तो उनके गाने को हम सुनते हैं, रियाज में उस चीज को हम लेकर आते हैं, चीजें बहुत खूबसूरत तब हो जाती हैं जब आप पेशे से सिंगर हैं, जैसे कि आपने हमें खुद बताया, उस लय को आप पकड़ पा रहे हैं, उस फील के साथ आप गा पा रहे हैं। तो कितना कठिन है किसी को कॉपी करना, मिमिक्री करना?
1: देखिए, पहले तो आपको बेसिक संगीत आना चाहिए अगर आप गाने को कॉपी कर रहे हैं तो।
0: गाने को कर रहे हैं
1: और बेसिक संगीत तो क्लासिकल ही है, और जब आप क्लासिकल जानते हैं तो आप जो भी गा रहे हैं वो सुर होता है, वो बिना सीखा जब व्यक्ति गा रहा होता है तो वो शब्द गाता है, और शब्द सुर नहीं बन पाते, सुरों में शब्द जा सकते हैं।
0: क्या
1: तो ये एक अलग चीज है। दूसरा, उस व्यक्ति या उस कलाकार को आत्मसात करने का प्रयास होता है, तो उसके प्रति आपकी जितनी श्रद्धा है और आपका प्रयास है वही आवाज के रूप में बाहर आता है।
0: क्या बात है, यानी कि एक बहुत बड़ी साधना है। जब आप इस साधना को करते हैं तो निश्चित तौर पर सब कुछ अच्छा होता है, बेहतर हो पाता है, तभी आप किसी को।
1: अब किशोरदा को आपको गाना है तो आपको किशोरदा बनना पड़ेगा।
0: तो चलिए, जब आपने यहाँ किशोरदा का जिक्र कर दिया है तो किशोरदा का कोई गाना।
2: हाँ चल के तुझे मैं ले के चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले जहां दूर

0: लाए। लगती हो भली, हंसती हो कली, जहां शाम सुहानी ढले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले,
1: और वो गगन आप है गगन जी।
2: क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच। वाकई बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात कर, और मुझे वाकई बहुत खुशी हुई। और बहुत कम समय में बहुत कुछ हमने यहाँ जीने की कोशिश की। आपके उस दौर में मैं चला गया, म्यूजिक की बातें हुई, मिमिक्री की बातें हुई, और फाइनली मैं आपसे एक संदेश जरूर जानना चाहूंगा स्टूडेंट्स के लिए जो इस क्षेत्र में आ रहे हैं, अपने आप को आगे लेकर जाना चाहते हैं। यूं कहें कि वो गुरु मंत्र क्या हुआ कि किस तरीके से इंडस्ट्री में अपने आप को टिका कर रखे, अपने सपनों को हम साकार कर सकें।
1: दो तीन बातें हैं, मैं वापस पोएटिक फॉर्म में ही कहूंगा, जो मेरी आदत है, फितरत है, कि मेहनत कर, कदम बढ़ाकर चल, मंजिल तेरी राह में होगी आज नहीं तो कल।
2: क्या बात है, बहुत खूबसूरत।
1: और दूसरा, जो आजकल पढ़ने लिखने की आदत छूट गई है बच्चों की, कि जितना ज्यादा पढ़ सके उतना ज्यादा पढ़, जितना ज्यादा पढ़ सके उतना ज्यादा पढ़, और जितना ज्यादा लिख सके उतना ज्यादा लिख, फिर आज तू जिनको पढ़ रहा कल उनसे आगे दिख।
2: क्या बात, बहुत खूबसूरत, बहुत।
1: और आखिरी मैसेज मैं मीडिया के विद्यार्थियों को स्पेशली देना चाहूंगा कि शब्द का संबल समय की धार देखो, शब्द का संबल समय की धार देखो, और अपने हाथ की पतवार देखो।
2: क्या बात,
1: नाव टूटी हो भले हिम्मत न टूटे।
2: आए है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत।
1: नाव टूटी हो भले हिम्मत न टूटे, देखना है तो नदी के पार देखो।
2: आए है,
1: देखना है तो नदी के पार देखो।
2: क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर मुझे रफली दो लाइनें खुद की ही याद आ जाती है, आपके सामने कुछ नहीं है।
1: बेहद
2: खुद पर और खुदा पर यकीन कर, मंजिल जरूर मिलेगी। क्योंकि जब खुद पर विश्वास नहीं है और अपना हौसला बुलंद नहीं है, तो कोई हमारी मदद नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: ईश्वर भी खुदा भी उन्हीं बंदों की मदद करता है दोस्तों, कि जब आप खुद पर काम कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, और फिर वही कहेंगे कि सुखद परिणाम, वो परिणाम आपके फेवर में आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने हमारे श्रोताओं को बताई, स्टूडेंट्स को यूं कहूं कि गुरु मंत्र दिया, और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरी तरफ से बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं,
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
2: सो लिसनर्स, ये इंटरव्यू, ये साक्षात्कार आपको कैसा लगा, 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बताइएगा जरूर। बहुमुखी प्रतिभा के धनी आज हमारे साथ जुड़े रहे डॉक्टर उमेश सी पाठक जी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज दिल्ली में। तो ये कार्यक्रम के बारे में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। न टेंशन लेने की जरूरत, न किसी को टेंशन देने की जरूरत है। जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए। टाटा बाय, टेक केयर।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: आजा प्यार की होड़ी
2: दिल बोले तो
3: हार्ट हार्ट
4: हवा यार सौदा सौदा
3: ओहो
1: दोनों डील कर
3: टाइट वेरी टाइट

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.

राम राम दोस्तों, आप सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनू शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 9:03 हो चुके हैं, 12 तारीख है और हमारे आसपास क्या खास है उसके बारे में जानेंगे जरूर मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। सावन का मौसम है, सावन के मौसम में बारिश का लुत्फ उठाइए लेकिन अपनी सेहत का भी ख्याल रखिएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुरक्षा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। आए है क्या बात।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा है और हर कोई ये चाहता है कि तनाव से मुक्त आप रहें, हम रहें। यही एक वजह की बात हेल्थ की आज हम बात करना चाहते हैं कि तनाव को कैसे दूर भगा सकते हैं। मैं समझता हूं अगर आप एक अच्छी सी मुस्कान अपने ऊपर रखकर चलते हैं, धारण करकर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आप तनाव से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुस्कान कितनी जरूरी है आपकी जिंदगी में। या यूं कहें कि आज का जो विषय है वो विषय है स्माइल प्लीज। बात करते हैं, मुस्कुराहट एक ऐसी दवा है जो इंसान को न केवल मुफ्त में मिलती है बल्कि ये उसके ज्यादातर शारीरिक और मानसिक रोगों के निदान में बहुत कारगर साबित होती है। मुस्कुराते रहने वाले मनुष्य की सेहत दुरुस्त रहती है और उसका मिजाज भी हमेशा बढ़िया रहता है। आइए जानते हैं मुस्कुराने के 10 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। प्रतिदिन सुबह मुस्कुराहट के साथ उठना, नई ऊर्जा से भरकर अपने दिन का स्वागत करना प्रसन्नता से जीवन जीने का सर्वोत्तम धन है। नंबर 2, मुस्कुराने से हमारा मन अपने आप ही चिंताओं से मुक्त हो जाता है और मन को एक आत्मिक सुकून मिलता है। नंबर 3, हंसी के ठहाकों के साथ तालियां बजाने से जीवन में उत्साह का संचार होता है तथा जब हम तालियों के साथ हंसी का व्यायाम करते हैं तो शरीर की सुप्त अवस्था में रहने वाली कोशिकाएं भी जागृत हो जाती हैं, जिससे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 4, मुस्कुराना कई रोगों की अचूक औषधि है। ये कैसी दवा है जिसका हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, मुस्कुराते रहने से मनुष्य का इम्यूनिटी सिस्टम सक्रिय होता है। इससे प्रकृति किलर सेल्स में बढ़ोतरी होती है जो वायरस जनित रोगों और ट्यूमर सेल को खत्म करने का कार्य करती है। मुस्कुराहट या दिल खोलकर हंसना हृदय के लिए एक सर्वोत्तम व्यायाम है जिसे टी सेल की संख्या में बढ़ोतरी होती है। नंबर 7, मुस्कुराने से एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए की मात्रा बढ़ती है जो श्वसन नली में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव करती है। मुस्कुराने से तनाव को जन्म देने वाले हार्मोन्स का स्तर घटता है। पाचन तंत्र सही रखना, वजन घटाना और चर्बी कम करने में भी हंसी अहम भूमिका निभाती है। जोर से हंसने या मुस्कुराने से हमारे शरीर में एक तरंग सी दौड़ जाती है जिसमें एंड्रोफिन हार्मोन भी होता है जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का दर्द निवारक है। ये शरीर में स्फूर्ति बढ़ाने और स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। नंबर 9, मुस्कुराने से मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों भागों की सक्रियता बढ़ती है जिससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। मुस्कुराना एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मनुष्य की मनोस्थिति को बदलकर उसे खुश रहते हुए जीने का अंदाज सिखाती है। हमेशा मुस्कुराना एक सकारात्मक भावना है जिसमें व्यक्ति को ऊर्जावान और शांतिपूर्ण बनाने के सभी तत्व उपस्थित रहते हैं। जैसे उदास एवं मुरझाया हुआ चेहरा किसी को भी नहीं भाता है, तो वहीं एक मासूम बच्ची की खिलखिलाती सी मुस्कुराहट हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, क्योंकि मुस्कुराना एक ऐसा एहसास है जो मन को सुकून प्रदान करता है। अतः हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मुस्कुराने के लिए कोई दिन कोई समय तय करने की जरूरत नहीं है। बस हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखिए और सेहतमंद बनने के साथ साथ दूसरों को भी सेहतमंद बने रहने में काफी मदद कीजिए। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: नेड़े होके भी दूरियां रहिंदियां ने, कुछ मोहब्बतां अधूरियां रह के भी पूरियां रहिंदियां ने।
1: ऐ जनाब मोहब्बत दा मामला है। गुरु राम नाम दोस्त साहब सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। कम्युनिटी रेडियो का जब हम जिक्र करते हैं तो ज्ञान विज्ञान की बात है, पढ़ने पढ़ाने की बात है, जिंदगी को जीने की बात है और हमेशा अप टू डेट रहने की बात है। सुनो शारदा 90.8 एफएम के माध्यम से लगातार मैं आप तक पहुंचा रहा होता हूं। मुझे उम्मीद है कि हम दूर तक पहुंच रहे होंगे, आपके दिल में उतर रहे होंगे, क्योंकि कुछ रेडियो स्टेशन में कुछ काम चल रहे थे जिसकी वजह से आज हमने महसूस किया कि रीच थोड़ा सा आगे हम बढ़े हैं। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो 120-40-60-205 के जरिए आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। फिलहाल मौसम क्या कह रहा है उसके बारे में जान लेना समझ लेना बहुत जरूरी है। शायद यही प्रकृति है कि एक पल में धूप है, एक पल में छांव है, एक पल में बाढ़ है। आज हम महसूस कर रहे हैं कि उमस बढ़ने वाली है, गर्मी आपको महसूस हो रही है। और कल परसों हमने देखा कि दिन में बारिश लगभग 12 घंटे हुई और जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में पूरा जल भराव की स्थिति हो गई थी। खैर, ग्रेटर नोएडा में आज 12 अगस्त 2026 को अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। साथ ही दिन में आंशिक धूप और हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है और ह्यूमिडिटी जिसको हम बोलते हैं आर्द्रता लगभग 67% रहने की उम्मीद है। और मौसम की जो स्थिति आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की बारिश के आसार हैं। और कहां कहां जल भराव है, ट्रैफिक एडवाइजरी क्या है, कहाँ कहाँ रूट डाइवर्जन है, 15 अगस्त आ रहा है, किन किन खास बातों को हम ध्यान में रखें, क्या करें क्या ना करें, ये जान लेना समझ लेना बहुत जरूरी है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, गाना सुनना भी जरूरी है, वो देखने में अली जफर की आवाज, लंदन पेरिस न्यूयॉर्क ब्यूटिफुल ट्रैक इस फिल्म का ही गाना सिर्फ सुनो शारदा 90.8 एफएम पर विद मी मेरे यानी गगन के साथ। कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का वन एंड ओनली सिर्फ सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। गुड मॉर्निंग।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: 10 से 19 साल के बच्चे हर हफ्ते लें आयरन की सिर्फ एक नीली गोली। ये खून में आयरन की मात्रा बढ़ाए, दिमाग और शरीर एकदम सॉलिड बनाए। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध। एनीमिया मुक्त भारत।
1: सही पोषण, देश रोशन, नहीं रहे कहीं कुपोषण।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन के विषय में। अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो नहीं सकती, लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत नहीं है, डाइजेशन सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, तो दिक्कतें परेशानी आपके सामने आती रहेगी। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही कि खराब से खराब डाइजेशन को एक दिन में सुधार देंगे, यानी ये पांच जूस। वो कौन कौन से पांच जूस हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, और जूस पीने का सही तरीका भी। चलिए विस्तार से बात करते हैं। खराब डाइजेशन कई बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए डाइजेशन को दुरुस्त रखने के लिए पांच हेल्दी जूस जरूर पिए। बेहतर पाचन के लिए हेल्दी जूस बहुत आवश्यक है। पाचन से जुड़ी समस्याएं बहुत असहज हो सकती हैं, काफी दर्दनाक भी, लेकिन बहुत से तरीकों से इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा करने का एक सबसे आसान तरीका है हेल्दी जूस पीना, जो विटामिन, मिनरल्स और डाइजेस्टिव एंजाइम से भरपूर होते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी हेल्दी जूस के बारे में जो आपके पाचन तंत्र के लिए काफी लाभदायक हो सकते हैं। बात करते हैं अदरक का जूस के विषय में, तो बात सामने आती है कि अदरक का जूस एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो पेट के डिस्कम्फर्ट से राहत दिलाता है और हेल्दी डाइजेशन होने में मदद करता है। अदरक का जूस बनाने के लिए आपको अदरक छील लेना है और उसे छोटा छोटा काट लें। अब थोड़े से पानी के साथ इसे ब्लेंड कर लें और इसके पल्प को छान लें। आप स्वादानुसार नींबू का रस या फिर शहद भी मिला सकते हैं, इससे ये आपको कड़वा नहीं लगेगा। अब बात अनानास का जूस। जी हाँ, अनानास में ब्रोमेलिन नाम का तत्व अधिक मात्रा में होता है, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकता है और इन्फ्लेमेशन कम करने में सहायक होता है। अनानास के जूस का सेवन करने से पाचन में लाभ मिल सकता है और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। आपको केवल ताजा अनानास लेना है, उसे थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। अब इसे छानकर पी सकते हैं। अब बात नींबू के रस की। नींबू का रस भी प्रकृति में अम्लीय होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नींबू की साइट्रिक प्रकृति गुर्दे की पथरी की संभावना को कम करने में मदद करता है। बात एलोवेरा जूस की। एलोवेरा अपनी हीलिंग गुणों के लिए जाना जाता है, इससे इन्फ्लेमेशन कम होने में मदद मिलती है। इससे पेट में हेल्दी बैक्टीरिया का उत्पादन बढ़ता है और पाचन में भी मदद मिलती है। आपको केवल एलोवेरा जेल को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। गाजर का जूस। गाजर में फाइबर अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है और ये पाचन तंत्र को रेगुलेट करने में मदद करता है। इससे हेल्दी बाउल मूवमेंट्स में भी मदद मिलती है। अगर आप इसे नियमित रूप से पीते हैं तो पेट में इन्फ्लेमेशन भी कम हो सकती है और पेट में हेल्दी बैक्टीरिया के उत्पादन में भी मदद मिलती है। आपको केवल गाजर को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके छान कर पी लेना है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

ब्यूटीफुल ट्रैक मेरे बिना तू फ्रॉम द मूवी रेस आतिफ असलम की आवाज वॉल्यूम सुरुशादा 90.8 एफएम। चाहे तो वॉल्यूम अप कर सकते हैं लेकिन गाड़ी पूरे होशो हवास में चलाएगा। सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर पहुंचिए, सुरक्षित ऑफिस पहुंचिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है और 15 अगस्त का माहौल है, तो ऐसे समय में जब आप अपनी गाड़ी लेकर निकल रहे हैं तो जरूरी कागजात अपने पास रखिएगा, ड्राइविंग लाइसेंस की बात हो या कुछ और, है ना। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ सिर्फ सुरुशादा 90.8 FM पर।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: बिल्कुल आपने सही सुना कि आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बात की थी कि अपने कागज पत्री अपने पास रखेगा ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ऐसी बात मैं क्यों कह रहा हूँ, डिजी लॉकर का भी जिक्र होता है, तो डिजी लॉकर के भी माध्यम से आप अपने जो जबरदस्त जो कागज हैं, जो काम के कागज हैं, आप उनको वहां लॉकर में रख सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात आपको समझ में आ जाएगी। 15 अगस्त का समय है और समय के अनुसार निश्चित तौर पर जब आप अपने व्हीकल को लेकर जाते हैं तो चेकिंग भी तंदुरुस्त होती है, दुरुस्त होती है। ट्रैफिक पुलिस वाले भाई साहब भी आपको रोक कर पूछ सकते हैं, उनका अधिकार है। तो आपका भी अधिकार है कि आई हैव अ डिजी लॉकर, उसमें आपके सारे कागजात आपको मिल जाएंगे। या आपने फिजिकल भी रखे हुए हैं तो आप उनको शो कर सकते हैं। अब ये बात इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल हो रही है, तो रूट डायवर्जन भी किए जा रहे हैं, लोगों की आवाजाही भी होगी, है ना। किसी को कहीं आगे जाना होगा जहां बैरियर है, लेकिन कागज तो दिखाने पड़ेंगे ना। तो दिल्ली NCR में हालिया बारिश की वजह से जलभराव और प्रगति मैदान में भारत व्यापार महोत्सव की वजह से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं, जो प्रमुख सड़कें हैं, भारी ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। एक बात और सोर्सों के अनुसार सुनने में यह आ रहा है कि आज रात 10 बजे से गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा से दिल्ली जाने वाले सभी मालवाहक भारी और मध्यम वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा और चिल्ला बॉर्डर से दिल्ली जाने वाले वाहनों को चिल्ला रेड लाइट से यू टर्न लेकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उपयोग करना होगा। और कालिंदी कुंज पर तो आप समझते हैं कि यहाँ ट्रैफिक थोड़ा स्लो रहता है। और परिचौकी में बात करना चाहूंगा कि दिल्ली जाने वाले जो व्हीकल हैं, P3 कासना और सिरसा होते हुए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की ओर मोड़ दिया गया है और नोएडा एक्सप्रेसवे पर, यानी कि जो अपना ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है, यहाँ पर एक्सपो मार्ट है, यहाँ पर एक मेला चल रहा है, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए गलगोटिया कट, एक्सपो मार्ट, गोल चक्कर के आसपास के रूट को डायवर्ट कर शारदा और LPG गोल चक्कर की तरफ निकाला गया है। तो बहुत छोटी छोटी बातें इनको नजरअंदाज ना करेगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल इन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। ब्रेक के उस पार आएंगे तो बात करेंगे डिजी लॉकर के बारे में कि कागजों को, अपनी इन्फॉर्मेशन को कैसे वहां सुरक्षित रख सकते हैं। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल इन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। याली फ्रॉम द मूवी गैंगस्टर, जुबिन गर्ग की आवाज सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। क्या बात है, आए है लवली।

इस ब्यूटीफुल ट्रैक को सुनने के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल, खुशामदीद, खैर मकदम में हूँ गगन आपके साथ हरियाली तीज की, आज के इस पावन पर्व की बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर कोई चाहता है कि हर किसी के जीवन में हरियाली ही हरियाली हो, कोई नहीं चाहता कि सूखा हो, रेगिस्तान हो, और इसीलिए हम सब कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, और नेचर भी अपने समय पर अपना काम करती है। और यही वजह कि जब बारिश आती है तो हमारे जो चेहरे हैं वो खिल जाते हैं, और नेचर को भी हम देखते हैं कि नेचर भी खिली खिली नजर आती है। तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आपका दिन शुभमय गुजरे और आज का दिन अच्छा गुजरे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बात की थी कि ट्रैफिक जो एडवाइजरी है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया, और मैंने आपको ये भी बताया कि 15 अगस्त के मद्देनजर दिल्ली एनसीआर में जो सिक्योरिटी है वो चाक चौबंद हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है कि हम जब बाजार में निकल रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, तो हम क्या करें क्या ना करें। सबसे पहली बात मैंने आपको ये कहा था कि अगर आपका खुद का व्हीकल है तो आपके जो ज़रूरी दस्तावेज हैं आप उनके साथ आप आगे बढ़ेगा। अक्सर हम देखते हैं कि लोग फिजिकल पेपर्स अपने पास रखते हैं। हमने ये भी देखा कि लोग आजकल डिजी लॉकर का भी अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप इस्तेमाल करना नहीं जानते तो बहुत सरल अच्छा तरीका है इसका। आप इसमें पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड आप इसमें रख सकते हैं। डीएल बोले तो ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की आरसी, इंश्योरेंस पॉलिसी, प्रदूषण प्रमाण पत्र, शैक्षणिक दस्तावेज यानी कि 10th और 12th की मार्कशीट, और जो और भी मतलब ज़्यादा अगर आपकी क्वालिफिकेशन है वो भी सब आप वहाँ रख सकते हैं, यानी कि शैक्षणिक दस्तावेज, ये इस बात को आप समझ लीजिए, और जो भी प्रमाण पत्र हैं, जाति प्रमाण पत्र या कुछ और, तो बहुत सारी चीज़ों को आप वहाँ सुरक्षित रख सकते हैं, और जब कोई मांगे तो आप उसको शो यानी कि दिखा सकते हैं। ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वन एंड ओनली सुरुशादा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। 9:48 हो चुके हैं, 12 तारीख है, और क्या है खास जाने के जरूर, मगर एक

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

सच बात तो ये कि इश्क वाकई कमाल है। इश्क मिलाता है, इश्क पुरानी यादें ताज़ा कराता है। और अपने आप से प्यार करिए, नेचर से प्यार करिए। और जब हम खुद से प्यार करते हैं, खुदा से प्यार करते हैं, ईश्वर से प्यार करते हैं, सबसे प्यार करते हैं, तो मुझे लगता है कि उसके जो परिणाम होते हैं वो सुखद परिणाम होते हैं। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ, सिर्फ और सिर्फ सुरुशादा 90.8 FM पर। प्यार करिए अपने आप से, प्यार करिए नेचर से। हरियाली तीज की आप सभी को बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब प्यार करते हैं तो निश्चित तौर पर सब कुछ अच्छा होता है। बात करने का मन करता है, किसी के साथ समय बिताने का मन करता है, किसी को सुनना आप चाहते हैं, किसी को सुनाना चाहते हैं। अजय बेटा कहीं फ्लो में बह गई, तुम तो पीछे आ जाओ। हाँ चलो, फ्लो में से निकल कर आते। कहने का मतलब ये कि हरियाली तीज की आप सभी को बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का दिन एक

आज दिन है तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि आज का दिन 12 अगस्त को इस तरीके से हम सेलिब्रेट करते हैं और इस वर्ष जो थीम है वो ये है कि सतत भविष्य के लिए युवा सशक्तिकरण। इसका जो नारा है वो है युवाओं को सशक्त बनाना और कल का निर्माण करना। सच बात तो है कि युवा है तो देश है, देश का भविष्य है। अब मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी में घोषणा करने वाला हूँ, मतलब जैन जी। हाँ वो जैन जी नहीं, सम्मान से बोलो बेटा, जी लगाओ जी, वो जी अलग सीख है लेकिन जी लगाना ही। खैर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने हित की बातें देश के साथ जोड़ते हुए वर्ष 2047 को अगर हमें विकसित भारत बनाना है तो हमें सबका योगदान बहुत ज़रूरी है। और नोएडा में, या यूँ कहें कि ग्रेटर नोएडा में क्या खास हो रहा है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सुनने में आ रहा है कि आने वाले समय में ग्रेटर नोएडा की यमुना सिटी में मेडिकल हब बनने की तैयारियाँ हो रही हैं, तो एक संभावना है तो रोजगार है। वक्त इशारा में होता हूँ 9:11, फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप लिसनिंग टू शारदा 90.8 FM। सच बात तो है कि इस गाने को एंजॉय करेगा, सावन में आग नहीं लगी है, सिर्फ एक गाना एंजॉय करने के लिए। गिनी वैड सनी फिल्म का ये गाना और मीका पाजी की आवाज, नेहा कक्कड़ की आवाज, बादशाह भी संगत दे रहे हैं सिर्फ सुरुशादा 90.8 FM पर। कल होगी फिर से मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं गगन आपके साथ।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
5: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
4: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
5: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
4: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
5: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
4: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
5: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
4: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
6: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
7: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
6: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई। जी हां, जब हमारी सेहत ठीक होती है तो हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। मान लीजिए अगर आप बीमार हैं तो आप जो काम करते हैं वो नहीं कर पाएंगे और उन कामों की वजह से जो आपसे लोग जुड़े हैं, आपका परिवार जुड़ा है, तो उनका काम भी प्रभावित होता है, तो कितना बड़ा नुकसान होता है। घर में अगर बच्चे बीमार होते हैं तो माँ बाप परेशान होते हैं, कई बार उनका काम मारा जाता है, तो कितनी हानि होती है। तो इसी तरह से बहुत सारे काम हमसे जुड़े हुए होते हैं, जब हम बीमार होते हैं तो उनका असर हम पर तो होता ही होता है, हमसे जुड़े अन्य लोगों पर भी उसका असर होता है, जिसकी वजह से हमें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि जब हम बीमार हो जाते हैं तो उसको सही कराने में पैसा लगता है और हम काम पर भी नहीं जा पाते तो वो भी हमारी हानि होती है, और जो हमारा पैसा बचा हुआ रखा है वो कहीं ना कहीं बीमारी को ठीक करने में लग जाता है और हमारे जो घर के अन्य काम हैं वो भी प्रभावित होते हैं। तभी कहा है कि आपकी अगर सेहत अच्छी होती है तो आपको लाभ ही लाभ है, इसीलिए हमें अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। यही हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक बात पहुंचाते हैं कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, बच्चों का समय पर टीकाकरण करवाएं, गर्भवती महिलाएं अपना ध्यान रखें, अपना टीकाकरण करवाएं। और आज के कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में खासकर हम बात करेंगे टीकाकरण की, क्योंकि टीकाकरण के बारे में बहुत सारी अफवाहें हैं कि टीका क्यों लगवाएं, इससे बुखार आ जाता है, दर्द होता है, और जब हम ठीक हैं तो टीका लगवाने की क्या आवश्यकता है, और भी बहुत तरह की बातें टीकाकरण के बारे में प्रचलन में हैं। तो इन्हीं सब भ्रम को तोड़ने के लिए और आप तक सही जानकारी पहुंचे कि टीकाकरण कितना ज़रूरी है हमें आने वाली गंभीर समस्याओं से, बीमारियों से बचाने के लिए, अपने नन्हे मुन्नों को बचाने के लिए, तो किस तरह से टीकाकरण काम करता है और हमें कौन सी बात माननी चाहिए, कौन सी नहीं माननी चाहिए, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो टीकाकरण से जुड़ी हुई हैं, जिनको जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि इन बातों का हमारी सेहत से सीधा संबंध है। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में टीकाकरण के बारे में विस्तार से बताने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं संजय गांधी, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्याली भट्टाचार्य, और इनसे जानकारी ले रही हैं सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च या सीफार की प्रोग्राम लीड रंजना द्विवेदी जी। तो आइए सुनते हैं ये जानकारी।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार, आज हम बात करेंगे टीकाकरण पर, और टीकाकरण ही नहीं, टीकाकरण क्यों नहीं कराते हैं लोग, लोगों को में क्यों हिचकिचाहट होती है टीकाकरण को लेके। बहुत सारे लोगों को कुछ तरह के संदेह होते हैं, कुछ उनकी अपनी मिथ्या धारणाएं होती हैं, और इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्याली भट्टाचार्य, जो संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में है। तो नमस्कार मैम।
2: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे।
1: मैम, टीकाकरण बहुत जरूरी है, सबको पता है
2: जी,
1: लेकिन फिर भी लोग हिचकिचाते हैं, जानते हैं बच्चे की जान बचेगी फिर भी हिचकिचाते क्यों?
2: देखिए, ये तो बहुत बड़ा एक स्पेक्ट्रम है कि इसमें हिचकिचाहट ही सिर्फ नहीं है, कंप्लीट रिफ्यूजल भी होता है कि हम करवाएंगे ही नहीं, अच्छा सोचेंगे, अच्छा थोड़े दिन बाद करवा लेंगे। तो इसके लिए तो हम जब देखते हैं तो पूरा एक ये स्पेक्ट्रम है, कंप्लीट रिफ्यूजल ना से और सोचते हैं से लेकर अच्छा करवा लेते हैं तक। तो हेजिटेंसी जो है, मतलब हिचकिचाहट जो है टीकाकरण को लेके, ये हर एक के मन में होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे मेरा बच्चा तो अभी कमजोर है, कुछ दिन बाद करवा लेंगे। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अरे लेके जाएंगे बच्चे को, अगर बुखार हुआ, कोई और चीज हो गई तो। मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि जो बीमारी के लिए हम टीका लगवा रहे हैं वो बीमारी तो बहुत दूर की बात है, इसलिए लोगों को वो बीमारी के बारे में ज्यादा नहीं समझ में आता है। पर जो फीवर अभी होगा, बुखार अभी होगा, जो बच्चा रोएगा, वो अभी तुरंत उनको दिख रहा है, तो वो तुरंत की वजह से ज्यादा हिचकिचाहट होती है।
1: तो इसी पे मैं पूछना चाहूंगी मैम, जैसे अगर आपके पास तो रोज बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, क्या कुछ लोग सिर्फ पूछने के लिए आते हैं कि हम बच्चों का टीकाकरण कराएं या ना कराएं? संदेह रहता है उन्हें, मतलब इतना समझ के पढ़ लिख के भी आते हैं फिर भी उनके मन में संदेह रहता है कि कराएं या ना कराएं, तो क्या ऐसे लोग भी आते हैं आपके पास?
2: बिल्कुल आते हैं। जो ज्यादा पढ़ा लिखा वर्ग है वो तो अब गूगल चाचा से भी समझ के आता है और सब जगह से पढ़ के आता है, तो उसकी सारी पूछताछ ज्यादा होती है। जो थोड़ा हमारे गांव की महिलाएं हैं, गांव के लोग हैं, वो ANM के कांटेक्ट में बहुत ज्यादा रहते हैं, आंगनवाड़ी दीदी, ANM दीदी, तो उनसे लगातार मिलने की वजह से थोड़ा बहुत संदेह रहता है, पर उनको हेल्थ का इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है इन लोगों से, तो इसलिए उनकी शंकाएं जरा सा कम होती हैं। बीच तबके के लोग जो हैं, न बहुत ज्यादा अमीर न बहुत ज्यादा गरीब, उनमें डाउट तो रहता है पर उनमें एक्सेप्टेंस बेटर होता है।
1: क्यों रहता है मैम? एक्चुअल में देख अनुभव होता है, जैसे मेरे अपने बच्चे हैं, मैंने देखा कि उनको टीकाकरण हुआ, बुखार आ गया, मतलब कुछ उनका अपने अनुभव की वजह से ऐसा होता है या इन जनरल ऐसा होता है जिसका पहला टीकाकरण है वो भी इस तरह के होते हैं?
2: देखिए हमारी सोसाइटी जो है ना वो कहानियां बहुत बनाती है।
1: हाँ,
2: तो एक बच्चे को अगर फीवर आया, उसने पड़ोस में बताया भाई मेरे बच्चे को टीकाकरण के बाद फीवर आ गया, वो तीसरे को बताता है, तीसरा बताता है अरे उसको 105 डिग्री आ गया, पांचवें चौथे तक सातवें तक पहुंचते पहुंचते फीवर के साथ में झटका भी आने लगता है, झटके के साथ मुंह से झाग भी निकलने लगता है। तो जब तक वो उस औरत के पास पहुंचता है जो अपने बच्चे को पहली बार लेके जाने वाली है, उसका इतना बतंगड़ बन चुका होता है उस बात का कि वो हिचकिचाती है, अब डरती है कि मैं ना जाऊं, मैं ना लगवाऊं, अरे उसके बच्चे के साथ ये हो गया था तो मेरे बच्चे के साथ ना हो जाए। तो ये जो छोटी छोटी कहानियां हैं जो एम्पलीफाई हो जाती हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो वो बढ़ चढ़ के बताते बताते कई लोग जो लगाने भी जा रहे होते थे उनके कान तक पहुंचते पहुंचते वो इतना बढ़ गया होता है कि वो मना करने लगते हैं कि नहीं रहने तो भैया।
1: तो इसी से जुड़ा हुआ सवाल है मैम, नहीं लगाते लोग, किस संदेह के कारण नहीं लगाया, हिचकिचाहट के, और अल्टीमेटली बच्चे की सेहत पे असर पड़ता है, कुछ बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या कहेंगे, मतलब उनको इसको दूर करने के लिए किस तरह की चीजें होनी चाहिए समाज में? और दूसरी चीज, अगर बच्चा कमजोर है, कुपोषित है, तो क्या उसका टीकाकरण किया? ये भी एक मिथ है लोगों के बीच में कि भाई हमारा बच्चा बहुत कमजोर है, टीका लगेगा तो पता नहीं, और अगर बुखार उखार आ गया तो और कमजोर हो जाएगा, तो इन सब चीजों को कैसे देखें हम?
2: देखिए जो बच्चे कुपोषित है उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, उनमें बीमारी आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक नॉर्मल रिष्ट पुष्ट बच्चे को शायद बीमारियां कम हो, पर एक कमजोर बच्चे को ये जितने कीटाणु होते हैं वो सब पकड़ने लगते हैं। तो उस बच्चे को अगर टीकाकरण होता है तो चांस बड़ी बीमारी होने का घट जाता है, तो उस बच्चे की जान बच जाती है। तो अगर ऐसे कुपोषित बच्चे हैं उनको तो टीकाकरण होना ही चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वैसे ही कम होती है, टीकाकरण ना होने से उनके शरीर को इसका एहसास ही नहीं होता है कि वो बड़ी बीमारियों से कैसे लड़े। तो हमारे पास जब टीकाकरण है तो टीकाकरण करने से आप समझ लो शरीर को ये अभ्यास होता है कि ये बीमारी आए तो हमें कैसे लड़ना है, और जब वो बीमारी आती है तो कुपोषित बच्चे का शरीर भी तैयार होता है उस बीमारी से लड़ने के लिए, तो जान माल सब बच जाता है।
1: बहुत अच्छी बात बोली मैम आपने कि जब टीकाकरण होता है तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है वो मजबूत होता है, अगर बच्चा कमजोर है, कुपोषित है, लेकिन टीकाकरण उसको वो ताकत देता है कि अगर कोई बीमारी उसको घेरती है तो वो उससे लड़ सकता है। एक बड़ी चीज ये भी है मैम कि बहुत सारे लोग दिहाड़ी मजदूर होते हैं, है ना, पढ़े लिखे भी बहुत नहीं होते हैं, उनको उन तक शायद हमारी पहुंच भी नहीं हो पाती है और वो नहीं करवा पाते किसी कारण से टीकाकरण। तो अगर किसी का मतलब एक टीका छूटा पूरा हमारा, क्योंकि हमारा तो शेड्यूल है पूरा, हमारा एक पूरा एक नियम है कि ये टीका लगेगा फिर वो टीका। अगर ऐसा कुछ होता तो उनके लिए क्या है कि जब जागे तब सवेरा, या मतलब किस तरह से वो अपने टीकाकरण को सुनिश्चित करवा पाए?
2: जब आपने दिहाड़ी की बात करी है तो आपको समझना पड़ेगा कि उनके मन में क्या शंकाएं रहती हैं या क्या प्रॉब्लम होती है। जब ये आप समझ जाओगे तो ही उसको दूर कर पाओगे। दिहाड़ी मजदूर का एक सेंटर पे बच्चे को लेके जाना, मैंने एक दिन की रोजी रोटी गई, आने जाने का खर्चा अलग से लगा, क्यू में खड़े होके टीकाकरण कराने का समय और गया, बच्चे को अगर फीवर आया डॉक्टर को दिखाना पड़ा, दवा करनी पड़ी तो उसका खर्चा और गया, अगर उसको घर पे एक दिन और रुकना पड़ा तो एक दिन और की गई। और ये मत समझना कि अगर वो ड्यूटी पे नहीं गया तो किसी और को वो ड्यूटी नहीं दे देंगे और उसको बिठा नहीं देंगे, तो उसके लिए ये एक रिस्की बात हो जाती है, इसलिए वो डरता है। अगर वो इन सब शंकाओं से पार उतरे तभी तो वो बच्चे को लेके जाएगा ना।
1: बिल्कुल।
2: तो उसको सबसे ज्यादा रीअश्योरेंस की जरूरत है कि अगर छूटा है तो नहीं छूटना चाहिए, अगर छूटा है तब भी आप टीकाकरण पूरा करो।
1: तो बच्चे की सेहत के लिए, उसके भविष्य के लिए टीकाकरण जरूरी है। दिहाड़ी आप थोड़ा आगे पीछे कर लीजिए। सभी श्रोताओं से मेरा कहना है कि अगर बच्चा स्वस्थ रहेगा तब आप दिहाड़ी पे भी जा पाओगे, अगर बच्चा बार बार बीमार पड़ेगा तो आप दिहाड़ी पे भी नहीं जा पाओगे। और टीकाकरण स्वस्थ रखने में बहुत मददगार होता है, इसलिए सबको टीकाकरण करना चाहिए। मैम एक और चीज देखी गई है, बच्चा तो छोटा होता है, माँ बाप होते हैं, क्लोजली माँ बाप होते हैं, लेकिन ये निर्णय लेना कि बच्चे को टीकाकरण, क्योंकि बहुत मतलब समाज में हम देखते हैं दादी नानी सबके अपने अनुभव होते हैं, हमने 10 बच्चे पैदा किए हमारे बच्चे तो बिना टीकाकरण के अच्छे हैं, इस पे क्या आप सलाह देना चाहेंगी लोगों को? क्योंकि मतलब स्पेशली घर के बड़े लोगों को या जो भी उनको सपोर्ट करते हैं।
2: रंजना जी, ऐसा होता है कि माँ जो है वो अथॉरिटी नहीं होती है घर में, तो दो तरह के परिवार होते हैं, एक जैसे हमारे आपके, हम हमारे पति और हमारे दो बच्चे, इस तरह का परिवार होता है। एक होता है भरा पूरा परिवार जिसमें दादा दादी चाचा चाची सब होते हैं, तो वो एक सम्मिलित, एक सब लोगों का एक डिसीजन होता है, उसमें सिर्फ माँ बाप का नहीं होता है। तो ऐसे में माँ क्योंकि हेल्थ वर्कर के साथ बार बार बार बार उठती बैठती है, हमारी आंगनवाड़ी दीदियां सब घर जाती हैं, तो उन बहनों का इन्फ्लुएंस माँ पे होता है, पर फाइनल अथॉरिटी अगर न्यूक्लियर फैमिली है, हम दो हमारे दो वाले, तो फादर की होती है। पर माँ समझा बुझा सकती है, कह सकती है, और अगर सम्मिलित परिवार है तो फिर तो सास का बहुत बोलबाला रहता है। सास ससुर अगर कह दे कि नहीं कराना है तो माँ बाप चाहते हुए भी नहीं कराते। तो आपने जैसे कहा कि सास कह देगी हमने भी तो बच्चे पाले थे, कौन सा उनका टीका करवाया था, सब अच्छे हैं, कौन सा तुम्हारा बेटा जो है कहाँ से वो आ गया है कि उसको जो है टीकाकरण नहीं करवाए, तो कुछ नहीं, तुम काम नहीं करना चाहती हो, दिन भर वहां बैठी रहोगी गप्पे मारोगी इसलिए तुम जाना चाहती हो। पर हाँ, आज के जमाने में जैसे गूंज से या कहीं से भी अवेयरनेस जैसे हम फैला रहे हैं, तो कुछ समझदार सासें होती हैं, वो कहती हैं कि हाँ बीमारियां तो है तो लगवा ही लो, बहू भेज भी देती है। तो दो तरह के थॉट्स होते हैं, और जब ये सम्मिलित डिसीजन की बात आती है ना, तो वहाँ थोड़ी सी हिचक बढ़ जाती है। जो न्यूक्लियर फैमिली होता है वो फास्टर होता है, फटाक से कि हमें तो लगवाना है, पर पीछे से कौन देखेगा अगर बीमार हो, क्योंकि हम दो हमारे दो में तो हम दोनों वर्किंग है, काम कर रहे होते हैं, तो काम पे निकल जाएंगे, पीछे से बच्चे को कौन देखेगा, या तो बड़ा बच्चा देखेगा उस छोटे बच्चे को, तो थोड़ी दिक्कत तो उसमें आ जाती है। और सम्मिलित परिवार में तो दादा दादी चाचा चाची सब मिलके बच्चे पाल देते हैं, तो उसमें एक बार अगर हाँ हो जाए तो फिर बच्चे के साथ कोई और दिक्कत नहीं आती है, मामला बहुत स्मूथ हो जाता है।
1: एक डर लोगों के बीच में, क्योंकि कभी कभी होता है किन्हीं कारणों से किसी बच्चे की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और कोविड के बाद बहुत सारी अफवाहें फैली टीकाकरण के बाद लोगों की डेथ, और थोड़ा सा हमने देखा है कि हमारा जो प्रतिशत है वो कम हुआ है, एक दोबारा से वो उस विश्वास को जगाने में बहुत प्रयास करने पड़ रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोगों को बताएं कि टीके कितना सुरक्षित हैं और इन अफवाहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए,
2: देखिए, वो जो कोविड वाली मेमोरी है ना, वो तो इंसान के जहन में बैठ गई है। कितनों को ही हमने मरते देखा, कितनों को ही इतना परेशान दौड़ते हुए देखा, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो वो जो मेमोरी है ना, वो यादें वो दिमाग में बस जाती हैं। ऊपर से जब कोई भी नया वैक्सीन आता है, जैसे कि हमने 2016 में IPV या इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, रोटा वायरस वैक्सीन, निमोनिया का वैक्सीन, ये सब लॉन्च किए, तो कोई नई चीज आती है ना, तो इंसान की दुविधा बढ़ती है, हिचकिचाहट बढ़ती है। और कोविड के मौतों के बाद से तो लोगों के दिमाग में डर तो बैठ ही गया था। पर ये जानना पड़ेगा कि हमारी ये जिन वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं, वो तो कोविड से पहले भी थी और आज भी हैं।
1: बिल्कुल,
2: अगर सुरक्षित नहीं होती वो वैक्सीन, तो इतने सालों से चली आ रही है, हम देखते कि वो सुरक्षित नहीं है। पर ऐसा तो नहीं हुआ, कोविड से पहले भी थी और आज भी है। और एक बच्चे का, अगर देखो, उस वैक्सीन को हम एक बच्चे को तो नहीं लगाते, हम तो वही वैक्सीन पूरे इंडिया में वही बैच हजारों बच्चों को लगता है। तो एक बच्चे की अगर मौत होती है, तो वो इन्वेस्टिगेट करने वाला होता है कि उस बच्चे की मौत क्यों ही, ऐसा तो नहीं हुआ कि इससे बहुत सारी मौतें हो गई, तब वो इन्वेस्टिगेशन का मामला बन जाता है। अदरवाइज अगर सिंपली एक क्लस्टर में एक ही बच्चे की मौत हुई, तो ये जांच लेना पड़ता है, ऐसा तो नहीं है उसमें कोई बड़ी बीमारी थी पहले से ही और उसको टीका लग गया। तो कई कारण हो सकते हैं कि बच्चे की मौत हुई हो। और ऐसी बातें ना, अफवाहें ऐसे फैलती हैं पागलों की तरह कि क्या बताएं हम, उससे लोग और डर जाते हैं। पर क्योंकि जैसा मैं कह रही हूं कि हमारे टीके कोविड से पहले भी थे, आज भी हैं, तो वो बहुत ही सुरक्षित टीके हैं, तभी वो पब्लिक में अभी तक विश्वास के साथ दिए जा रहे हैं।
1: थैंक यू मैम। और धीरे धीरे हम लोग टीकों में बदलाव भी कर रहे हैं, बहुत सारे टीके लगने की जगह कई टीकों का एक वैक्सीन बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैम, क्या आपको लगता है कि शिक्षा का स्तर जो होता है समुदाय में, उसका असर होता है, वो प्रभावित करता है टीकाकरण के प्रति लोगों को प्रेरित करने या ना प्रेरित करने में?
2: बिल्कुल करता है। जितनी शिक्षा उतना डाउट। जो देखना ज्यादा शिक्षित होते हैं ना रंजना, वो आके पूछेंगे ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा। हमारा काम है उन्हें रीअश्योर करना। जो कम शिक्षित है, मैंने जैसे कहा, उन्हें आंगनवाड़ी दीदी, ANM दीदी ऑलरेडी प्रिपेयर करके भेजती है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको रीअश्योर करें, थोड़े बहुत उनके सवालों के जो जवाब है, शंकाओं के जवाब दें। और कई बार ऐसा होता है कि पहली बारी में वो संतुष्ट नहीं होते हैं, अगल बगल भी पूछते हैं, अपने नेबर्स को पूछ लेते हैं, दूसरे जिस बच्चे के टीका लगा होता है उसकी माँ से भी बातचीत कर लेते हैं। तो ये जो थोड़ा सबसे बतिया लेते हैं ना, तब लगता है कि इनको अब लग जाना चाहिए बच्चे को। तो ऐसे लोगों को हमें थोड़ा सा प्रयास करके रीअश्योर करना पड़ता है।
1: मैम, एक चीज है कि मुझे टीके की जानकारी है और एक चीज है कि मुझे टीके की समझ है, दोनों में अंतर है थोड़ा
2: सा। बहुत बड़ा अंतर है रंजना। जानकारी है वो तो चारों तरफ से उनको आते रहते हैं कि मेरे बच्चे को पोलियो का टीका लगना है, ये हुआ जानकारी, मेरे बच्चे को टीकाकरण होना है, किस उम्र पे पोलियो लगना है, कितने बूंद पिलाने हैं, उसको पिलाने के बाद बच्चे के साथ कोई ऐसी बात तो नहीं होगी जिसकी समझ हमें होनी चाहिए, बुखार तो नहीं आएगा, कोई और परेशानी तो नहीं होगी, मेरा बच्चा रोएगा तो नहीं। ये होती है जानकारी कि अगर ऐसा होता है मुझे क्या करना है, किसके पास जाना है, दवा क्या करनी होगी। तो ये होती है जानकारी। ये तो ठीक है, समझ है कि होना है टीकाकरण, उससे फर्क नहीं पड़ता। पर जब उनको जानकारी पूरी समझदारी के साथ समझाई जाए, तब उनके जहन में ये होता है कि हाँ, टीकाकरण होना है।
1: इसी से जुड़ा हुआ सवाल है मैम, आप डॉक्टर हैं, आपके पास जब लोग आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, तो आप बहुत अच्छे से समझा ले जाती हैं, क्योंकि आप सब कुछ अच्छे से खुद जानती हैं और आपको पता है कि किसको कैसे समझाना है। लेकिन समुदाय स्तर पे जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर हैं, वो जब काउंसलिंग करते हैं, तो उनको क्या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनके पास बिल्कुल ब्लंट सवाल आते हैं, है ना, क्योंकि सबसे पहला उन्हीं को झेलना है, माँ को तैयार भी उनको करना है, माँ को हिचकिचाहट है तो वो भी उन्हीं को दूर करनी है, और उनका अपने संदेश भी बहुत सही होने चाहिए जिससे वो कन्विंस हो सके और आप तक टीका लगवाने के लिए आ सके। तो उनके लिए कोई मतलब कुछ टिप्स देंगी कि किस तरह से वो लोगों से बात करें, वो मतलब स्पष्ट भी हो संदेश उनका और वो पेरेंट्स को भी अहमियत उसकी समझ में आए। होता क्या है ना, मतलब मेरे घर वाले अगर मुझे समझा रहे हैं तो मुझे उतनी वैल्यू नहीं समझ में आती जितना आप मुझे समझाएंगे। वही हाल आशा दीदी और हमारी आंगनवाड़ी दीदी और ANM की भी होती है, क्योंकि वो रोज हमसे मिलती हैं। तो उन उनके लिए मैं जानना चाहूंगी, मतलब उनको आपकी तरफ से क्या चीजें उनको इम्पोर्टेंस बतानी चाहिए जिससे लोग टीकाकरण के लिए तैयार हो।
2: आशा दीदी लोग जब घर घर जाती है ना, दस्तक एक चलता है कि वो आपके बच्चे में कोई बीमारी तो नहीं, नया बच्चा हुआ उनके घर में जाके उनको उन लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, अरे बिटिया हुई है वेरी नाइस, लड़का हुआ है बहुत बढ़िया। तो वो एक आशा दीदी के साथ ऑलरेडी विलेजेस में, गाँव में, घरों में माओ का, दादियों का, चाचियों का, सबका एक अलग सा रिश्ता बना होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कहीं कोई मौत हो गई या कहीं कोई बीमारी हो गई तो वो लोग हिचकिचाते हैं उसमें भी। आशा दीदी इज ए वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन उस समय कि, और पहली बार में वो नहीं कर पाएगी, उसको बार बार बार बार जाना पड़ेगा। तो पहले ही समय की वो रिएश्योर कर देगी और हो जाएगा ऐसा नहीं मानना पड़ेगा उसको। पहली बार जाके कि कैसे हो कैसे नहीं हो, बच्चे के बारे में खबर लेना, अच्छा ये हो गया है, दूसरी बार में जाके तुम्हारे बच्चे को ऐसा हुआ था ना, अब कैसा है, तो तीसरी बार में जाके इसका तो एक टीकाकरण है, तुमने कितने बच्चे हैं, तुमने इनको लगाया है, ये किया है, तो फिर वो बाकी घर के बच्चों के लिए भी बात करना। ये शायद चौथी पांचवी बार में ऐसा होता है कि आशा दीदी ये कम्युनिकेट कर पाती हैं कि आप लोग जो हैं अपने बच्चे का टीकाकरण कर लीजिए। तो बच्चे की खबर लेने से शुरू करके बच्चे के बारे में बताना और बार बार जाके माँ को रीअश्योर करना और टीके के बारे में बताना, अच्छा फलां को और अगल बगल के जो लोगों को टीका लग रहा है उनके बारे में भी जानकारी देना, अरे फला मौसी के बच्चे को टीका लगा था देखिए कितना बढ़िया तंदुरुस्त है, और फला मौसी के नहीं लगाया था उनको तो दस्त आ गए भाई। तो इस तरह से आप दूसरे लोगों की कहानियां बताकर भी उनको रीअश्योर कर सकते हैं।
1: बिल्कुल मैम, अच्छी चीज़ है। आशा दीदी लोग जो भी हमारे प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ता हैं, जब उनके पारिवारिक रिश्ते भी बन जाते हैं सभी जितने भी उनके लाभार्थी होते हैं उनके साथ, और अलग अलग उदाहरण देके वो दूसरों को, मतलब एक परिवार अगर तैयार हुआ है तो उनके लिए एक उदाहरण होता है कि वो बाकी परिवारों के लिए करते हैं। कहते हैं ना तुम्हारी तो ड्यूटी है तो तुम टीका कर रही हो, और वो करती भी है। लेकिन और भी लोग हैं जो इनको सहयोग कर सकते हैं। आपको लगता है समुदाय में टीकाकरण के विषय में भी जैसे एक तो हम लोग जिस तरह से रेडियो पे अभी बात कर रहे हैं, प्रचार प्रसार के साधन होते हैं, गांव में और भी लोग होते हैं जो जिनको इन्वॉल्व किया जा सकता है, तो आप कुछ बताना चाहेंगे इस पे कि कैसे लोगों से वो लोग सहयोग ले सकती है अगर कोई परिवार नहीं तैयार है? क्योंकि हिचकिचाहट दूर करना बहुत आसान चीज नहीं होती, वो भी एक बच्चे के लिए तैयार करना बहुत मुश्किल होता है। अगर नहीं मेरे से तैयार हो रहा तो मैं किसकी मदद लूं?
2: रंजना, जब हम लोगों ने न्यूमोकॉकल वैक्सीन की लॉन्च करी थी तो ये थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आई थी, नए वैक्सीन को लोग जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो जिन लोगों से हमने गांव में लिया वो थे गांव के प्रधान। प्रधान साहब को सब लोग, अगर प्रधान ने कह दिया तो ठीक ही होगा, ये रवैया रहता है। तो हमारे साथ ये बहुत मदद हुई कि कई गांवों में प्रधानों ने हमारी बड़ी मदद की कि उन्होंने कहा कि नहीं ये वैक्सीन ठीक है, आप सबको जाके टीकाकरण करवाना चाहिए। कई जगह हमें मस्जिद जाना पड़ा, वहां के मौलानाओं से बात करनी पड़ी, कई जगह स्कूलों में जाना पड़ा, वहां के प्रिंसिपल से बात करनी पड़ी। तो ये कई लोग होते हैं जो पीपल ऑफ अथॉरिटी होते हैं उस जगह पर, इन लोगों से बात करने से कई बार हमारी समस्याओं का समाधान होता है, लोग आगे आते हैं और ये मानते हैं कि जब ये इन्होंने कह दिया तो सही ही होगा और हम तब टीकाकरण आगे स्मूथली बढ़ता है।
1: तो मैम अच्छी चीज है कि अगर प्रधान है, हमारे बाकी जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इनको सहयोग करेंगे तो हम जो हिचकिचाहट होती है इनको समझाने में, समझा के टीकाकरण करवाने में उसमें मदद मिलेगी। आपको क्या लगता है कि कुछ और चीजें भी, कुछ और प्लेटफॉर्म हो सकते हैं जो हमारे एक होते ना कहते हैं एंट्री पॉइंट होता है परिवार का विश्वास जीतने के लिए? या दूसरी चीज मैं ये भी कहूंगी कि क्या टीकाकरण के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो पेरेंट्स को नवजात के संबंध में ध्यान रखनी चाहिए?
2: दूसरे सवाल का पहले जवाब दूं मैं आपका कि नवजात जो होता है ना उसका पहला टीकाकरण माँ का दूध होता है, क्योंकि माँ के शरीर से, कहते हैं ना माँ का दूध पिया हो तो सामने आ जा, तो माँ का दूध जो होता है उसमें से माँ की इम्यूनिटी बच्चे में ट्रांसफर होती है, कई विटामिन्स हैं, कई इम्यूनोग्लोबुलिन जो रक्षात्मक तंत्र होते हैं वो चीजें बच्चे में जाती हैं। सो जिन बच्चों ने माँ का दूध नहीं पिया है वो बच्चों के साथ परेशानियां ज्यादा होती हैं। जिन बच्चों ने माँ का दूध पिया है तो कम से कम 6 महीने तक अगर उन्होंने माँ का दूध पिया होता है तो उनमें इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। और साथ साथ हम जब टीकाकरण कर देते हैं तो यही बच्चे हैं जो कम बीमार पड़ते हैं। तो माँ का दूध तो पहला टीकाकरण हुआ, उसके बाद हमने एज डॉक्टर्स टीकाकरण करना शुरू किया। पहली रक्षात्मक शक्ति माँ होती है। अब आई बात की टीकाकरण कैसे और कहां से और एंट्री पॉइंट कहां होता है। देखिए, एक एंट्री पॉइंट तो होता है ICDS वाला सेंटर। जब माए राशन लेने जाती है ना, वहां पर दूसरी माओं से बातचीत होती है, तो वहां एक संगोष्ठी टाइप की हो गई कि एक ने दूसरे से कहा, अरे हम तो उस दिन गए थे फला दिन, तो वो दीदी मिली थी, बहुत अच्छे से हमारा टीकाकरण हो गया बच्चे का। दूसरी बोलेगी, अरे मैं तो देर हो गया, मैं तो लगवाया नहीं, अरे पोलियो का टीका छूट गया, रोटा वायरस का टीका छूट गया, बच्चे को बड़े दस्त हो रहे हैं। तो वो माँ की समझदारी पे है कि कौन सा मैसेज वो उसमें से लेती है कि टीकाकरण हुआ तो हमारा बच्चा स्वस्थ है। और इंसेंटिव क्या रहता है कि हमें राशन लेना है, जाती इसलिए है कि हमें राशन ने जाना है, और वहां जाके उसका दूसरे लोगों के साथ एंगेजमेंट होता है, दूसरे लोगों के साथ बातचीत होती है, और फाइनली ये बातचीत जो है उसको एक बिहेवियरल चेंज कराती है। तो उसके बिहेवियर में ये चेंज होता है कि हाँ, हमें टीकाकरण करवाना चाहिए। तो वहाँ दूसरों से जब बातचीत करती है, जो उसके मन में शंकाएं होती हैं, वो भी दूर हो जाती हैं। इसलिए ये एक एंट्री पॉइंट होता है जहाँ पर माँ ये हाँ या ना सोचती है कि हम टीकाकरण कराएं या ना कराएं, गई वो राशन के लिए होती है। फिर जो हमारे VHNDs होते हैं उसमें भी यही होता है कि पोषक तत्वों के बारे में बताया जाता है, पर कई बार ये भी उसमें बातें होती हैं कि फला के बच्चे को लगवाया था देखो और फला ने नहीं लगवाया देखो, आशा दीदी ने बहुत डांट लगाई कि समय पे टीकाकरण नहीं हुआ। तो ये जो डिलेज करते हैं, मिस करते हैं टीकाकरण, इसके बारे में भी उनको ज्ञान मिलता है कि नहीं करना चाहिए हमें। और आउटराइट जिनमें रिफ्यूजल होता है, जो कि बहुत कम होते हैं कि हम नहीं करवाएंगे, वो वाले बहुत डिफिकल्ट केस होते हैं। वरना थोड़ा आप अगर रिएश्योर करो, समझाओ, उनके साथ एंगेज करो, तो बहुत समझदार है माताएं, क्योंकि हर माँ को चाहिए कि हमें अपने बच्चे को प्रोटेक्शन देना है। माँ तो माँ ही होती है।
3: बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी चीज है कि अगर आपको दिक्कतें हो रही ये कोई पेरेंट्स को समझाने में, तो ये प्लेटफॉर्म्स आप आंगनवाड़ी केंद्र उनको ले जा सकती हैं, VHND के सेशन में उनको ले जा सकती हैं, या आप किसी ऐसे लाभार्थी के घर भी ले जा सकती हैं जिन्होंने अपने बच्चों का पूरा टीकाकरण कराया है, और उन्होंने अगर टीकाकरण के बाद बुखार आया है तो उसको कैसे मैनेज किया, वो समझने के लिए भी हो सकता है। या आप छोटी छोटी क्लिप्स बना के ना, वीडियो क्लिप्स भी आप लोगों को मिलती है, वो भी दे सकते हैं। बहुत अच्छी मैम। एक और चीज़ में, मतलब अब हम अंत में आ रहे हैं अपने, अगर इस व्यवहारिक यात्रा को समझें हम, तो ये क्या यह कहना सही होगा कि अधिकांश परिवार पूरी तरह इनकार करने के बजाय हिचकिचाहट से स्वीकृति की ओर आगे बढ़ते हैं? यह यात्रा आमतौर पर कैसी दिखती है? किस बिंदु पर डर भरोसे में बदलना शुरू होता है?
2: बहुत अच्छा सवाल है आपने कहा। देखिए, इंसान का जो व्यवहार होता है ना, वो कई चीजों से इन्फ्लुएंस होता है। तो जैसे कि इन माओं में होता है कि पहले डरते डराते जाती हैं, उसके बाद एक कंडीशनल एक्सेप्टेंस होता है कि हम सोच रहे हैं। तो जितनी बार हमारा या आंगनवाड़ी दीदी का या किसी हेल्थ वर्कर का उनसे कांटेक्ट बनता है, तो डर के बाद सोच रहे हैं के बाद एक कॉन्फिडेंट एक्सेप्टेंस आता है कि हाँ लगवाएंगे। उस दौरान अगर उनको आप बार बार बार बार रिएश्योर करो, मतलब डर जो है ना उसको आउट नंबर करना पड़ेगा आपको, किससे ना, बार बार रिएश्योर करके कि हाँ लगवाना है। तो जैसा मैं आपको पहले भी बताया कि 3-4 बार ये सब एड्रेस करने के बाद वो डर से लगवाएंगे तक पहुंच जाते हैं। तो उसके बाद अगर सेफ एक्सपीरियंस हुआ तो अगली बार जरूर आएंगे टीके के लिए। तो आपको जो है ये देखना है कि जो सोर्स उनको रीअश्योर कर रहा है, जो उनको बता रहा है, जो हेल्थ वर्कर बात कर रहा है, वो ट्रस्टेड हो। सो अगर बुखार में कोई भी अनसर्टेनिटी रहे कि हाँ कुछ गलत हो रहा है, वो बदल जाए कि उसमें नहीं, कुछ गलत नहीं होगा, आपका बच्चा प्रोटेक्टेड है, हम टीकाकरण करेंगे, और सिर्फ टीकाकरण नहीं करेंगे, उसके आगे भी कुछ भी हुआ तो उसके लिए हम मौजूद हैं, हम रहेंगे, आप कभी भी हमारे पास आ सकते हो। तो ये रिएश्योरेंस जब मिलता है कि पहले टीकाकरण में और उसके बाद तक हमारे साथ ये हेल्थ वर्कर हैं, तब वो डर धीरे धीरे चला जाता है। और एक बार टीकाकरण हुआ और सेफ एक्सपीरियंस हुआ तो उसके बाद तो दोबारा तो आएगा ही आएगा।
3: तो हमें टीकाकरण करने वाले को भी भरोसा होना चाहिए कि वो बिल्कुल टीके सुरक्षित हैं और बच्चे को कुछ नहीं होगा, और टीका करवाने वाले माँ बाप को भी पूरा विश्वास, क्योंकि जब विश्वास करने लगते हैं हम चीज़ों पे तो हमारा डर दूर होना शुरू होता है और फिर वो हमारे व्यवहार में आ जाता है और तभी वो हमें फायदेमंद भी होता है। इसी के साथ मैम हम फिर से एक बार समराइज करते हैं इस चीज़ को, और अगर संक्षेप में कहना हो तो इन समुदायों में टीकाकरण को लेकर हिचकिचाहट वास्तव में किस बारे में, हम रिकैप करेंगे मैम, है ना। सीधे सीधे मैं पूछना चाहूंगी कि हिचकिचाहट किस चीज को लेकर होती है, स्वीकृति बढ़ाने में सबसे ज्यादा कौन से फैक्टर्स काम करते हैं, और तीसरी चीज जो लोग हमारे सुन रहे हैं उन परिवारों के बारे में क्या समझना चाहिए, वो क्यों हिचकिचाते हैं। मतलब ये मैं डॉक्टर्स के लिए भी पूछ रही हूँ कि जब आता है कोई पेरेंट तो उसको एक होता ना मेरी सुन लोगे आप तब मैं आपकी सुनूंगी, क्योंकि मेरे अंदर का जब सब कुछ बाहर आ जाएगा तभी शायद आप जो मुझे ज्ञान देंगी वो अंदर जाए। तो तीन चीजें हैं मैम, हिचकिचाहट जो होती है वो वास्तव में किस चीज को लेके होती है, स्वीकृति बढ़ाने में कौन से फैक्टर्स काम आते हैं, और तीसरी चीज हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है जो टीकाकरण दे रहा है उसका क्या व्यवहार होना चाहिए।
2: बिल्कुल सही आपने पूछा, उत्तर भी आपने शायद बता ही दिया होगा, फिर भी मैं बता रही हूँ कि डर एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से टीका नहीं लगवाते। डेली वेजेस में इनकम का लॉस होता है इसलिए कई बार नहीं बताते हैं। पिछले एपिसोड में कहीं उनको कोई एक गलत एक्सपीरियंस हो गया होगा, या ये डर, मैंने सबसे पहले बोला है डर कि मेरे बच्चे को कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी बात होती है जो रोकती है हिचकिचाहट जिसकी वजह से होती है। तो एक चीज जो डिफरेंस ला सकती है वो है जैसा आपने कहा कि उनकी बात को सुनना। उनकी बात को सुनना बहुत बड़ी बात है, बिकॉज वो अपने डर को जब बाहर निकालेंगे तभी हम समाधान बता पाएंगे। उनकी डर को सुनना और उसके बाद देखना कि कहाँ क्या हो सकता है, उसको आजमाना, उनको देखना होता है कि हम आजमा के तो देखें, और उसके बाद तब उसको मानना। ये एक पूरा सर्कल होता है जिसके थ्रू वो माँ बाप जाते हैं। तो जो भी हेल्थ वर्कर उनके साथ होता है उसको होम विजिट पे उनकी बातों को सुनना, और वैक्सीन के लगने पर वैक्सीन के बाद भी उपस्थित रहना, और सबसे बड़ी बात है कि वैक्सीन से बुखार आएगा ये पहले से एक्सप्लेन करना। जब पहले से इंसान को पता होता है ना तो वो इतना नहीं डरता, लेकिन जब उसको कुछ पता ही नहीं है, अनसर्टेन है, तो वो ज्यादा डरता है। मतलब आप सोचो आपको कल ऑफिस जाना है तो आप ठीक है कल ऑफिस जाना है, ये करना है और कल ऑफिस जाना है। जब आपको पता ही नहीं है कल क्या लेके आएगा, कोविड टाइम्स में कितना अनसर्टेनिटी हुआ था, कितना डर मन में बैठ गया था कि कल हो ना हो, तो ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। पहले ही उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हाँ इस टीकाकरण से बुखार आ सकता है, इस टीकाकरण की वजह से आपको ये परेशानी हो सकती है, ऐसे में आप हमारे पास आइए, या ऐसे में ये दवा हम आपको दे रहे हैं इसे खिलाइएगा। तो वो जब रिएश्योर हो जाता है ना तब वो पेरेंट कभी नहीं हिचकिचाएगा। एक एक्सपीरियंस अच्छा तो सब अच्छा, पहल अच्छी हो जाए ना तो सब अच्छा हो जाता है।
3: बहुत अच्छी बात कही मैम आपने, पहल तो करिए अच्छा ही होगा। और मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि टीकाकरण जो है ना वो सिर्फ एक माँ की जिम्मेदारी नहीं है, उस बच्चे का अधिकार भी है। तो हमें हर बच्चे को उसका अधिकार देना है, सुनिश्चित करना है कि हर बच्चे का पूरा पूरा टीकाकरण हो।
2: डरिए नहीं, हम आपके साथ हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, सब आगे आए माता पिता, अपने बच्चे को टीकाकरण करवाएं, क्योंकि स्वस्थ बच्चा स्वस्थ भविष्य। तो अगर आप अपने बच्चे के भविष्य को स्वस्थ देखना चाहते हैं टीकाकरण जरूर करवाएं।
3: बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और मुझे पूरा विश्वास है कि पेरेंट्स आगे आएंगे, सभी अपने बच्चों का टीकाकरण कराएंगे, उनको उनका अधिकार दिलाएंगे। थैंक यू वेरी मच।
0: तो श्रोताओ, आज के कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई के माध्यम से आपने जाना कि टीकाकरण हमारे जीवन को बचाने के लिए कितना जरूरी है। हमें अफवाहों में नहीं फंसना चाहिए, हमें डॉक्टर की बात माननी चाहिए, आशा दीदी हैं, ANM बहन जी हैं, उनकी बात माननी चाहिए, और अपने बच्चों का, गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करवाना चाहिए, क्योंकि टीकाकरण गंभीर बीमारियों से हमको बचाता है। अगर हम टीकाकरण समय से नहीं करवाते तो हमें कहीं ना कहीं एक दिन पछताना पड़ता है कि काश हमने डॉक्टर साहब की बात मान ली होती, काश जो रेडियो पर कार्यक्रम आया उसमें जो बताई गई बातें हमने मान ली होती, तो शायद ये दिन हमको देखना नहीं पड़ता। तो हम आपसे एक बार फिर से आग्रह करेंगे कि आप अपने बच्चों का जरूर टीकाकरण करवाएं समय पर। फिलहाल समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। अगले कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। सिर्फ खांसी टीबी का लक्षण नहीं, टीबी के और भी लक्षण हो सकते हैं। बलगम में खून आना, थकान, पुरानी बीमारी, रात में पसीना आना, वजन में गिरावट, हाल में हुए शारीरिक बदलाव, शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ होना, सीने में दर्द, बुखार, बलगम वाली खांसी, तो आज ही जांच कराएं। और अधिक जानकारी के लिए निश्चय संपर्क हेल्पलाइन नंबर 1800 11 4 6 टोल फ्री पर कॉल कर सकते हैं।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड, क्या है खास जानकारी बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है। फाइबर, कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है। इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर

है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुरोशादा 90.8 FM शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: क्या हुआ बहू, इतनी खांसी?
2: माजी, मुझे टीबी है।
1: टीबी और छुपा कर रखा?
2: माजी, मुझे डर था कि कहीं आप मुझे वापस मायके न भेज दें।
1: जाना तो तुझे पड़ेगा, लेकिन मायके नहीं, डॉट सेंटर। टीबी कोई ऐसी बीमारी थोड़े ही है जो छुपाते फिरें। टीबी छूने, साथ खाना खाने या रहने से नहीं फैलती। टीबी मरीज को जरूरत है आपके प्यार की और डॉट्स के पूरे कोर्स की। टीबी से दूर रहें, टीबी के मरीज से नहीं। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। लेकर हाजिर हूं आपका मनपसंद कार्यक्रम खेत खलियान, और वो भी लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, आपके कल्याण के लिए, आपके आर्थिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए भारत सरकार अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। और हमारे बहुत से किसान बहन भाई इस योजना का लाभ उठा रहे होंगे, और बहुत से किसान भाई ऐसे भी होंगे जो अभी तक इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे होंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी बात की कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि क्या है और इसका लाभ आप कैसे ले सकते हैं। जी हाँ किसान मित्रों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत भारत सरकार छोटे और सीमांत किसान भाइयों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत 6,000 रूपए हर साल प्रत्येक पात्र किसान भाई को 3 किश्तों में दिए जाते हैं, और ये सहायता राशि सीधे किसान बहन भाइयों के बैंक खाते में जमा हो जाती है, जिसमें हर 4 महीने बाद किसान भाइयों को 2,000 रूपए की सहायता दी जाती है। हमारे किसान भाइयों के लिए ये योजना बहुत लाभकारी साबित हो रही है। बुआई से ठीक पहले नकदी संकट से जूझने वाले किसान भाइयों को इस योजना के पैसों से खाद, बीज और अन्य साधन जुटाने में सहायता मिल जाती है। अब बात आती है सबसे महत्वपूर्ण कि इस योजना का लाभ कैसे हमारे किसान भाई ले सकते हैं। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले हमारे जो किसान भाई हैं, जो भी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो वो खुद भी, आजकल तो स्मार्टफोन का जमाना है, तो अपने फोन के जरिए आप जाइएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर, जो कि है pmkisan.gov.in। यहाँ पर जाकर के आप अपने आप को पंजीकृत कर सकते हैं, या फिर आप जन सुविधा केंद्र में जाकर के पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके बाद आधार कार्ड, जोत का ब्यौरा यानी कि जो आपकी खतौनी है जिस पर आपका नाम लिखा होता है कि आपके नाम कितनी जमीन है, वो दस्तावेज, और साथ में आपके बैंक खाते की पासबुक, तभी आपका पंजीकरण होता है। और इसके बाद आपके पंजीकरण का ब्यौरा राज्य सरकार से केंद्र सरकार के पास पहुंच जाता है। लेकिन किसान मित्रों, एक विशेष बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, आपका आधार कार्ड, आपकी खतौनी और आपकी बैंक की पासबुक, इन तीनों दस्तावेजों में आपका नाम एक समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधार कार्ड में आपका नाम कुछ है और जो जमीन की खतौनी है उसमें नाम कुछ है, या बैंक की जो पासबुक है उसमें नाम कुछ है। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आपका पंजीकरण नहीं हो पाएगा और ना ही आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले पाएंगे। तो आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि तीनों दस्तावेजों में आपका नाम एक समान होना चाहिए, तभी आपका पंजीकरण होगा और तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो किसान बहन भाइयों, बहुत ही अच्छी ये योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि केंद्र, या फिर अपने नजदीकी जन सुविधा केंद्र में जाके आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक देशभक्ति रागनी, कलाकार हैं ऋषिपाल खदाना और उनके साथी।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे ऋषिपाल खदाना और उनके साथियों से ये देशभक्ति रागनी। किसान बहन भाइयों, जब आप खेती करते हैं तो उसमें लागत के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, चाहे आप बीज की बात करें, खाद की बात करें, पानी की बात करें, कृषि यंत्रों की बात करें, दवाइयों की बात करें, सबके लिए पैसों की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास ज्यादा जमीन है तो ज्यादा पैसे की आवश्यकता होगी, क्योंकि ज्यादा लाग लगेगी। अब वो पैसे की व्यवस्था कहाँ से की जाए? कई बार ऐसा होता है, कहीं अन्य जगह से हम पैसा ले लेते हैं तो उस पर बहुत सारा ब्याज लगता है, जो कि उसकी भरपाई करना संभव नहीं है। ऐसे में हमारे किसान भाई परेशान हो जाते हैं कि आखिर अब खेती करें तो कैसे करें। तो इसका सीधा समाधान है, सरकार ने एक आपके लिए बहुत ही अच्छी योजना चला रखी है, जिसका नाम है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। केसीसी के नाम से ज्यादातर हमारे किसान बहन भाई इसको जानते हैं, परिचित हैं। तो जिन किसान बहन भाइयों के पास अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है तो वो बनवा सकते हैं। और बड़ा ही आसान तरीका है बनवाने के लिए कि आपके नाम जो जमीन है, आप उसके कागज ले जाइए, अपना आधार कार्ड ले जाइए, और भी कुछ जरूरी चीजें होंगी वो आप अपने नजदीकी बैंक में जाकर के पता कर लीजिए कि हमको केसीसी बनवाना है तो किन किन दस्तावेजों की और आवश्यकता होगी। वहां पर आप सीधे मैनेजर साहब से मिलेंगे, वो आप

बताएंगे कि आपका जो केसीसी है वो कैसे बन सकता है। तो इस तरह से आप अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं और फिर आपको खेती करने में धन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और एक और महत्वपूर्ण आपको बात बता देते हैं कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है इस पर बहुत ही कम ब्याज लगता है और जितना पैसा आप निकालते हैं उसी पर ब्याज आपका लगता है। अगर बैंक के साथ आपका व्यवहार ठीक रहता है, यानी कि आप पैसा समय से लेते हैं, समय पर जमा करते हैं, तो आपकी जो लिमिट है ना वो बढ़ा दी जाती है। तो किसान मित्रों, अभी तक अगर आप इस योजना का लाभ नहीं उठा रहे हैं तो जरूर लीजिएगा। आप अपने नजदीकी बैंक में जा सकते हैं और वहां पर केसीसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही किसान क्रेडिट कार्ड योजना की, और आइए अब आपको एक और देशभक्ति रागनी सुनवाते हैं। कलाकार हैं ज्ञानेंद्र सरधाना।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे ज्ञानेंद्र सरधाना से ये देशभक्ति रागनी। किसान मित्रों, कई बार अचानक होने वाली भारी बारिश, सूखा, तूफान या यूं कहें किसी अन्य तरह की प्राकृतिक आपदा से फसलों के खराब होने का खतरा बना ही रहता है और इसका पूरा नुकसान किसान भाइयों को उठाना पड़ता है। इन्हीं अनिश्चितताओं के कारण होने वाले वित्तीय नुकसानों से किसान भाइयों को बचाने के लिए भारत सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चला रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बहुत कम पैसे देकर आप अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। बीमा कवरेज के तहत अगर बीमित फसल नष्ट हो जाती है तो इसकी पूरी भरपाई का जिम्मा बीमा कंपनी का होता है। इस बीमा के तहत खाद्यान्न फसलें जैसे अनाज, बाजरा, दालें, इसके अलावा तिलहन और वार्षिक बागवानी फसलों को कवर किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आवेदन करने के लिए हमारे किसान भाई अपने नजदीकी बैंक में जाकर के अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे किसान भाइयों के पास पहले से ही किसी तरह का लोन या क्रेडिट कार्ड है तो वे उस बैंक से ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवा सकते हैं। किसान मित्रों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्लेम लेने के लिए आपको सबसे पहले 72 घंटे के भीतर कृषि विभाग को फसल खराब होने की जानकारी देनी होती है। इसके बाद आवेदन करना होता है। फॉर्म में फसल खराब होने का कारण, कौन सी फसल बोई गई थी, कितने क्षेत्र में फसल बर्बाद हुई है, इन सब बातों का ब्यौरा देना होता है। साथ ही जमीन से संबंधित जानकारी भी देनी होती है। इसके अलावा बीमा पॉलिसी की फोटोकॉपी की जरूरत होती है। आवेदन करने के कुछ दिनों के बाद ही बीमा कंपनी के प्रतिनिधि और कृषि विभाग के कर्मचारी खेत का निरीक्षण करते हैं और नुकसान का आकलन करते हैं, और जब सब कुछ ठीक पाया जाता है तो किसान के बैंक खाते में बीमा का पूरा क्लेम डाल दिया जाता है। तो इस तरह से किसान बहन भाइयों, आप भी किसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं सुनील चौहान से एक देशभक्ति रागनी।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे सुनील चौहान से ये देशभक्ति रागनी, और इसी रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा।
4: नई दुल्हन तो बिल्कुल चांद जैसी है।
5: काकी आप अपनी टीबी का इलाज तो करवा रही हैं ना?
4: हाँ बेटी मैं टीबी की दवाइयाँ हर रोज खा रही हूँ। ये दवाई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त मिल रही है।
5: हाँ अब तो आप और जल्दी ठीक हो जाएंगी क्योंकि अब सरकार टीबी के मरीजों को मुफ्त इलाज के साथ हर महीने 500 रुपए की मदद भी दे रही है ताकि वो इलाज के दौरान पोषण से भरपूर भोजन ले सकें और ये मदद सीधे उनके बैंक खाते में आएगी।
4: दुल्हन सुंदर ही नहीं समझदार भी है।
6: आइए मिलकर टीबी को हराएं, टीबी मुक्त भारत बनाएं।
7: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
8: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो बात निकल कर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए हैं, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन B की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देती है। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉनवेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूं ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
3: मेहरबानो, एक फूल खिला था।

आज उस कमर में बैरी बिशियर चूट गया। मेहरबानो तारा रोहतास की लाश के लिए कफन तो होती है, मेरे दोस्तों चौगिरदे कोई दिखाई नहीं दिया। आज ऐसी विपता पड़ गई कि आज कमर के लिए

0: गर्भ के चौथे महीने से प्रसव के 6 महीने बाद तक हर माँ ले रोजाना संतुलित भोजन के साथ आयरन की एक लाल गोली। एनीमिया मुक्त भारत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सही पोषण, देश रोशन, नहीं रहे कहीं कुपोषण।
2: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन आपके साथ। हमारा, हम सबका फर्ज बनता है कि हम महिलाओं का सम्मान करें, उनका ख्याल रखें। और आज का समय देखा जाए तो महिलाएं पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, और ऐसे समय में हमारी और नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उनको कोई भी किसी भी प्रकार का कष्ट न पहुंचने दें। इसी संबंध में हमने पहले भाग में बात की थी कानूनी अधिकारों के बारे में, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, कब पड़ती है और ये सब जानना समझना क्यों जरूरी है। पहले भाग में हमने बात की महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में, उनके घटक के बारे में, जेंडर की भूमिकाएं, जेंडर को समझना, मौलिक अधिकार, उसके प्रकार, कुछ इस तरीके से बातें हमने पहले भाग में की। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं समानता का अधिकार के बारे में। इसके अंतर्गत बात सामने आती है, समानता का अधिकार भारत के संविधान के अंतर्गत प्रदान किया गया एक मौलिक अधिकार है। ये कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण को निश्चित करता है, और ये भी सुनिश्चित करता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान जैसे किसी भी कारण से किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता। बात करते हैं जीवन का अधिकार के विषय में। जीवन के अधिकार का अर्थ है सार्थक, पूर्ण और सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार। जीवन का अधिकार ये सुनिश्चित करता है कि मानव अस्तित्व के लिए प्रेरक वातावरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। जीवन का अधिकार भ्रूण, खासतौर पर बालिका भ्रूण पर भी लागू होता है जिन्हें जन्म लेने का अधिकार है। बात करते हैं निजी स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत विशेषज्ञ बताते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है, जो विशेष रूप से किसी व्यक्ति के कार्य करने की स्वतंत्रता को व्यक्त करता है। इस अधिकार का अर्थ किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत कारावास यानी बंदिश या अन्य रूप से किसी भी प्रकार से शारीरिक नियंत्रण से आजादी है। थोड़ा और डिटेल में यानी कि विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार से मतलब क्या है। बात करते हैं बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना शास्त्रों के शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, एसोसिएशन संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने और बसने की स्वतंत्रता, किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने, व्यवसाय जारी रखने की स्वतंत्रता, ये सब हमारे स्वतंत्रता के अधिकार हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सामाजिक सुरक्षा का अधिकार के विषय में। सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणा के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा का अधिकार किस प्रकार दिया गया, इसके विषय में मैं आपको बता रहा हूँ। समाज के सदस्य के रूप में हर व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा पाने का हकदार है, उसका वो हक है। राष्ट्रीय प्रयास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा ये वास्तव में उसे प्राप्त होता है, और गौरवपूर्ण जीवन जीने और व्यक्तित्व के मुक्त विकास के लिए वो राष्ट्र की व्यवस्था और संसाधनों के अनुरूप आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार अनिवार्य रूप से पाने का हकदार है। इसी में बात सामने आती कि सामाजिक सुरक्षा के अधिकार में पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, आवास, शिक्षा, पानी और सफाई समेत बुनियादी अधिकारों को साकार करने के उपाय भी शामिल हैं। अगला विषय है शिक्षा का अधिकार। इसके अंतर्गत बात सामने आती है शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत मौलिक अधिकार माना गया है। इसके अंतर्गत कई बातें शामिल हैं, जैसे कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, सभी के लिए माध्यमिक शिक्षा को सुगम बनाना, जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं की है उन्हें बुनियादी शिक्षा उपलब्ध कराना, न्यूनतम मानक निर्धारित करना और शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए सभी स्तरों पर शिक्षा प्रणाली के भेदभाव को समाप्त करने की अनिवार्यता भी शामिल है। काम करने का अधिकार। ये कुछ ऐसे अधिकार हैं जो हमें जानना समझना वाकई बहुत जरूरी है। इसके अंतर्गत विशेषज्ञ बताते हैं कि हर व्यक्ति को जीविका चलाने के लिए बुनियादी पारिश्रमिक हेतु कार्य करने का अवसर दिया जाना चाहिए। काम रोजगार का अधिकार मौलिक मानवाधिकार है जिसका लक्ष्य हर व्यक्ति को उपलब्ध कराना है, जैसे कि रोजगार चुनने की आजादी, काम करने की उचित और अनुकूल स्थितियां, बेरोजगारी से सुरक्षा। ये अधिकार विशेष रूप से उल्लेख करता है कि सभी काम करने वाले लोगों को उचित और अनुकूल पारिश्रमिक मिले ताकि वो सम्मानजनक जीवन बिता सके और अगर जरूरी हो तो सामाजिक सुरक्षा के अन्य साधनों से इनकी आमदनी में पूर्ति की जाए। अब बात करते हैं प्रजनन अधिकार के विषय में। चलिए यहाँ पर एक काम करते हैं, थोड़ा सा अंतराल लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, क्योंकि जो बातों का सिलसिला है वाकई बहुत अच्छी जानकारी मैं लेकर आया हूँ आपके लिए महिलाओं के अधिकारों के बारे में। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात नहीं हो रही, आपको हमें हम पुरुषों को जानना समझना वाकई बहुत जरूरी है कि महिलाओं के अधिकार क्या क्या हैं और हम किस तरीके से उनका ख्याल रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे। चलिए इसी विषय में और वार्ता को आगे लेकर जाएंगे, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन आपके साथ।

एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन आपके साथ। बड़ी खुशी होती है जब माँ आपके लिए खाना बनाती है। बहुत अच्छा लगता है कि जब वो आपकी हर चीज का ख्याल रखती है। माँ ही है जो हम सबका ख्याल रखती है, तो हमारा आपका हम सबका फर्ज बनता है कि हम महिलाओं की इज्जत करें, उनका सम्मान करें, उनको किसी भी प्रकार का दुख या परेशानी न होने दें। महिलाएं, आपकी माँ, मेरी दीदी, यानी कि महिलाओं से देखा जाए तो यही समाज चल रहा है। घर गृहस्थी को वो संभाल कर चलती हैं और आज के समय में वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर भारत का नाम रोशन कर रही हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की और मैं आपको बताना चाहता हूं कि महिलाओं के कानूनी अधिकारों के विषय में बात हो रही है। ब्रेक पर जाने से पहले कुछ अधिकारों के बारे में हमने बात की है। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं प्रजनन अधिकार के विषय में। महिलाओं के प्रजनन संबंधी अधिकार भेदभाव से आजादी और महिलाओं की सामाजिक स्थिति के संदर्भ में बनाए गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम कहते हैं WHO, प्रजनन संबंधी अधिकारों को किस प्रकार परिभाषित करता है, इस प्रकार परिभाषित करता है, इस बात के जरिए मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। प्रजनन संबंधी अधिकार में दंपतियों और अलग अलग व्यक्तियों के ये अधिकार शामिल हैं। अपने बच्चों की संख्या, जन्म में अंतर और बच्चे कब पैदा किए जाएं, इसके बारे में स्वतंत्रता पूर्वक और जिम्मेदारी के साथ निर्णय लेना, इन निर्णयों को लेने के लिए सूचना, जानकारी, शिक्षा और माध्यम का पता होना चाहिए, लैंगिक और प्रजनन स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर प्राप्त करना, प्रजनन के बारे में भेदभाव, दबाव और हिंसा से मुक्त निर्णय लेना। अब और आगे बात करते हैं बलात्कार और यौन हिंसा के विरुद्ध अधिकार, इसके विषय में बात करते हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि महिलाओं के विरुद्ध किसी भी रूप में हिंसा को मानवाधिकारों का उल्लंघन माना जाता है, तो इसीलिए बार बार कहा जाता है कि हम सबको महिलाओं का ख्याल रखना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। महिला देवी भी है, दुर्गा भी है। कोई नहीं चाहता कि एक महिला का दुर्गा वाला रूप हम देखें, यानी कि उसका रौद्र रूप। कहीं कहीं जब हम देखने को मिलता है कि कहीं कोई महिला परेशान है या उसे परेशान किया जा रहा है, तभी शायद वो काली का रूप धारण करती है, तभी वो अपने गुस्से को जाहिर करती है, तभी वो जानना समझना चाहती है कि मेरे अधिकार क्या है। तो इस विषय में बात और सामने आती है। बलात्कार यौन हिंसा का एक रूप है, किसी दूसरे व्यक्ति, खास तौर पर महिला के साथ उसकी इच्छा या सहमति के बिना यौन संबंध बनाना बलात्कार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यौन हिंसा के कुछ ऐसे रूप हैं जिसके विषय में मुझे लगता है कि यहाँ चर्चा करना जरूरी है। सशस्त्र विद्रोह के दौरान योजनाबद्ध तरीके से बलात्कार, अवांछित यौन संकेत या यौन उत्पीड़न या किसी सहायता के बदले सेक्स की मांग करना, बलपूर्वक विवाह या जबरदस्ती साथ रहना, या इसमें बच्चों का जबरदस्ती विवाह भी शामिल है, गर्भ निरोधक इस्तेमाल करने की मनाही अथवा यौन संचारित रोगों के फैलने से बचाव के लिए अन्य उपाय इस्तेमाल करने के अधिकार की मनाही, जबरदस्ती गर्भपात कराना, जबरदस्ती वेश्यावृत्ति कराना और यौन शोषण के उद्देश्य से लोगों का अनैतिक व्यापार। और बात करते हैं यौन हिंसा की परिभाषा के विषय में। ये कैसा सब्जेक्ट है, ये हम सबके लिए जानना समझना वाकई बहुत

जरूरी है कि जाने अनजाने में हम कोई गलती तो नहीं कर रहे? इसका कहीं हमें कोई दुष्परिणाम तो भुगतना नहीं पड़ेगा? इसके विषय में बात करेंगे जरूर, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। और आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं के कानूनी अधिकार के विषय में। इसलिए कहा जाता है कि महिला देवी है, दुर्गा है, और हम नहीं चाहते कि हम उसका वो काली वाला स्वरूप देखें। हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, किसी भी प्रकार से उनका दिल हम न दुखाएं। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन आपके साथ।

एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन आपके साथ। आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं के कानूनी अधिकार के विषय में। हमारा फर्ज बनता है और यही एक वजह है कि सुनो शारदा 90.8 FM महिलाओं के अधिकार के विषय में पल पल चर्चा करता है विशेषज्ञों के साथ और कुछ खास बातें जुटा कर लेकर आते हैं हम आपके लिए। और हमारा रेडियो स्टेशन कहता है कि हम सबको महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। चलिए ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बात आधी अधूरी छोड़ी थी। एक विषय था यौन हिंसा की परिभाषा क्या है। जो विशेषज्ञ हैं, जो जानकार हैं, वो बताते हैं पीड़ित और गवाहों के अधिकार इसके अंतर्गत बात आती है। तो इसी के अंतर्गत बात निकल कर सामने आती है कि बलात्कार एक आपराधिक दुर्व्यवहार है और इसलिए बलात्कार पीड़ित और गवाहों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि भय और क्षति से सुरक्षा का अधिकार, आपराधिक न्याय की कार्यवाही से संबंधित सूचना पाने का अधिकार, संपत्ति और रोजगार की सुरक्षा का अधिकार, आपराधिक न्यायालय की कार्यवाही में उचित प्रक्रिया का अधिकार, सम्मान और संवेदनशीलता से व्यवहार किए जाने का अधिकार, सलाहकार पाने का अधिकार। अब बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार के दो प्रावधान है। नंबर एक, मानवों के अनैतिक व्यापार और भीख मांगने यानी कि बलपूर्वक श्रम पर निषेध। दूसरा बिंदु है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों तथा अन्य खतरनाक कार्यों जिनकी सूची अनुलग्नक 53 में दी गई है उसमें रोजगार देने की मनाही। बात सामने निकलकर इस विषय में यही आती है कि इन प्रावधानों का उल्लंघन कानून के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। दास वृत्ति या वैश्यावृत्ति के लिए मानवों का अनैतिक व्यापार भी कानून द्वारा निषेध है। बात करते हैं वोट देने का अधिकार। इसके संबंध में विशेषज्ञ बात करते हैं, भारत का संविधान विश्वव्यापी वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर वोट देने के अधिकार की गारंटी देता है, जिसके अनुसार भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष या अधिक है अपना वोट डाल सकता है। वोट देने का अधिकार महिलाओं को राजनीति में भागीदारी करने का समान अवसर प्रदान करता है। महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन, इसके विषय में बात सामने आती है कि भारत के संविधान में पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार दिए गए हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध और शोषण के बढ़ते हुए मामले दर्शाते हैं कि महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो कानून को मजबूत बनाने और जेंडर समानता को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार की रणनीतियां लागू करने की जरूरत है। जब हम आपसे तीसरे भाग में मुलाकात करेंगे तो बात करेंगे महिलाओं के प्रति हिंसा के विषय में। महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है, कहीं उसमें आप जाने अनजाने में कोई गलती तो नहीं कर रहे, जैसे पत्नी से मारपीट, अनैतिक व्यापार, ये सारी चीजें महिलाओं के खिलाफ हिंसा के एक रूप में आती हैं। इसी के विषय में डिटेल में विस्तृत जानकारी मैं जुटा कर लेकर आऊंगा आपके लिए। तो बस ऐसे ही आप मेरे साथ यूं ही जुड़े रहा करिए। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक हम होते हैं आपके साथ। फिलहाल वक्त मुझे इशारा कर रहा है कि मुझे आपसे अभी लेनी होगी अनुमति। और ये खास जानकारी आपको कैसी लग रही है 0120-4060-205 पर आप मुझे कॉल करके बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। मैं हूं गगन आपके साथ। अपने शब्दों को यहाँ विराम देते हुए लेता हूँ आपसे अनुमति इस वादे के साथ कि पुनः होगी आपसे मुलाकात। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। नमस्कार।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.

0: तुम्हारा साथ निभाना छोड़ देगी और अस्पतालों के चक्कर लगेंगे सो अलग।
1: जी हाँ, आप भी सचेत रहें और रहें धूम्रपान से दूर, क्योंकि हम सबका है यही सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: अच्छा सोचिए, जरा सी चोट लगे तो आप क्या करेंगे?
2: दवाई की दराज में से पट्टी निकाल के लगा लूंगी।
1: अच्छा, हल्का सा बुखार हो तो?
2: दवाई की दराज में से गोली निकाल के खा लूंगी।
1: और बच्चे को दस्त लगे तो? क्या हुआ, दवाई की दराज में जगह खत्म हो गई क्या?
3: दस्त के इलाज में देर हुई तो बच्चों के शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दवाई की दराज में ORS और जिंक भी रखिए और दस्त शुरू होते ही इलाज शुरू कीजिए। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
1: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: मैं एक और एक डायरेक्टर के साथ काम काफी कर चुका हूँ, जैसे नासिर हुसैन। वो भी ऐसा करते थे कि गाना बनाने के टाइम में मेरे साथ वो शॉर्ट डिवीजन करते थे। कभी कभी वो क्या करते थे कि तुम गाना बनाओ, मैं शॉर्ट डिवीजन करूँगा। कभी कभी मुझे बोलते थे कि पहले शॉर्ट डिवीजन करके देता हूँ, तो पूरा शॉर्ट डिवीजन बताते थे और उस शॉर्ट डिवीजन से गाना निकलता था।

0: सबदंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं विमलेश।
1: और मैं अजीत। नमस्कार। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का विचार जो हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने लिखा है।
2: मनुष्य के व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए, तभी वो महान बनता है।
1: धन्यवाद आपको इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा ने संदेश भेजते हुए कहा है।
1: सप्रेम नमस्ते जी, हमें आपका उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यह जानकारियों का भंडार है। इसी प्रकार से कार्यक्रम प्रसारित करते रहें, धन्यवाद।
2: धमधा ग्राम सुखरी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका और अंजलि जंघेल।
1: और लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से जीवनलाल रजक और रामजी साहू।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
1: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे अनुरोध है कि इसी तरह से संदेश भेजते रहिए। तो अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी।
2: श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं भारत के संविधान की। चर्चा तो होती ही रहेगी, क्यों ना आज थोड़ा परिवर्तन करें
1: जी।
2: आइए आज सुनते हैं भारत के संविधान पर एक सुंदर कविता, लेकिन पहले कुछ दोहरा लें।
1: तो आइए दोहराते हैं श्रोताओं, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकारा गया और 26 जनवरी 1950 को देश भर में आधिकारिक रूप से लागू हो गया।
2: संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मुख्य शिल्पकार थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर।
1: संविधान की मूल प्रति पार्चमेंट पेपर पर लिखी गई थी। पहले इसे अंग्रेजी में लिखा गया और बाद में हिंदी में।
2: यह हस्तलिखित था जिसे बाद में टाइप कराया गया।
1: भारत के संविधान के लागू होने के समय इसमें कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। इसमें लगभग 1,45,000 शब्द थे, जिससे यह अब तक का अंगीकृत किया जाने वाला विश्व का सबसे लंबा संविधान है।
2: आज भारत के संविधान में कुल 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं।
1: भारत के संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभिक वाक्य है हम भारत के लोग।
2: भारत के संविधान को हाथ से लिखा गया था और जिसे लिखा था प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने।
1: और इसके पन्नों पर सुंदर कलाकृतियों को बनाया था श्री नंद लाल बोस जी ने, जो शांति निकेतन से थे। ये कलाकृतियां भारत की संस्कृति को दर्शाती हैं। संविधान की मूल प्रति में 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे।
2: भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भारतीय भाषाएं हैं।
1: तो आइए अब सुनते हैं भारत के संविधान पर ये कविता। अधिकारों का दीप जला, संविधान ने सबकी आस जगाई।
2: भारत माता के आंगन में एक नई सुबह मुस्काई।
1: न्याय स्वतंत्रता और समता का सबको सुंदर उपहार मिला।
2: हम भारत के लोग लिखते ही जन गौरव को सार मिला।
1: बाबा अंबेडकर की प्रज्ञा से बना ये मजबूत संविधान।
2: हर नागरिक को देता है सम्मान और नई पहचान।
1: स्वतंत्रता की लेकर सुगंध 26 जनवरी को ये आया।
2: लोकतंत्र के गहने जैसा ये संविधान सबको भाया।
1: देता अधिकार और कर्तव्य भी दोनों को संग मिलाता है।
2: लोकतंत्र के गहने जैसा संविधान सबको भाता है।
1: तो श्रोताओं, अभी आपने सुनी भारत के संविधान पर ये कविता। तो कैसी लगी ये कविता जरूर बताइएगा। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
2: भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार कौन माने जाते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं।
1: भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार कौन माने जाते हैं? हमारे IVRS नंबर पर यानी 8800044559 पर आप प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
2: और आप हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी अपना संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: और हाँ, CIET NCERT की शैक्षिक गतिविधियों की जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन को भी फॉलो कर सकते हैं। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है नकली हीरे।
2: ये कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कहानी पर आधारित एक नाट्य प्रस्तुति है, जिसके द्वारा ये संदेश दिया गया है कि मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए। चापलूसी कुछ समय तक चल सकती है, लेकिन अंत में सत्य बोलने वाले व्यक्ति का ही सम्मान होता है।

0: काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। वे दिन रात अपने बेटे के लिए चिंतित रहते थे। वे इसी चिंता में घुले जा रहे थे कि उनके बाद बेटे का क्या होगा।
1: मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए जो मेरे बाद उसे सही रास्ता दिखा सके।
0: सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया।
2: महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की
3: जय। बहुत अच्छे से शासन करिए।
1: शांत शांत, आप सबका स्वागत है। मैंने एक विशेष कार्य के लिए आप सबको दरबार में बुलाया है।
4: हाँ हाँ महाराज,
1: महाराज
4: बताइए।
1: हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर।
4: हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं महाराज।
1: मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा।
5: जी महाराज, पूछिए। क्या प्रश्न है आपका?
1: प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? मुझे सिर्फ सत्य ही जानना है।
6: निसंदेह महाराज, आप संसार में आप सब बुद्धिमान, सारे संसार में कोई नहीं है।
0: सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया।
1: आप सभी के उत्तर से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि भेंट स्वरूप आप सभी को एक एक हीरा दिया जाता है।
0: हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया।
7: जी महाराज, बहुत धन्यवाद।
8: महाराज की जय हो।
9: महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो।
1: आप सभी के उत्तर के लिए धन्यवाद।
0: सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुप। सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा।
1: नवयुवक, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, तुम चुपचाप खड़े रहे। क्या तुम्हें मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया?
4: महाराज ऐसी बात नहीं है, परंतु महाराज दूसरों ने तो

0: को प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है।
1: हम फिर भी आपका उत्तर सुनना चाहते हैं।
0: इसमें संदेह नहीं है महाराज कि आप बुद्धिमान भी हैं और ईमानदार भी हैं, परंतु क्षमा करें महाराज, आपसे पहले भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं, जो बुद्धिमत्ता में आपसे तो बढ़ चढ़ कर थे ही, ईमानदारी में भी वे आपसे बढ़ चढ़ कर थे।
1: हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। ये लो आपका इनाम, हीरा।
0: धन्यवाद महाराज। अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। उनके बीच कुछ चिंता का विषय था। वे आपस में कुछ दबी दबी आवाज में बातें करने लगे।
2: भाई क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ? मुझे भी नकली मिला। मुझे भी नकली
3: हो सकता है
2: यार, क्या सबको नकली मिला? तुम भी नकली? तुम
3: कैसे हो सकता है? नकली ही रहते सकता,
4: नकली कैसे हो
2: गया? अरे मैंने तो कई लोगों से पता करवाया, सभी ने बोला कि नकली है।
3: महाराज की जय।
1: शांत, क्या समस्या है? आप सब इतने व्याकुल क्यों हैं?
0: महाराज क्षमा करें, हम सभी के मन में एक दुविधा है महाराज, यदि आप आज्ञा दे तो हम पूछ लें। महाराज
1: कहिए, मेरी आज्ञा है, आप सभी निसंकोच कहिए।
0: धन्यवाद महाराज। महाराज हमने इन हीरो की जांच जौहरी से करवाई थी महाराज, लेकिन पता चला कि सारे हीरे तो नकली हैं महाराज।
1: क्या? और कोई शंका?
0: जी नहीं महाराज, आपने हमें जो भी दिया वो तो हमारे लिए उपहार ही है, बस केवल यही प्रश्न था महाराज, आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया महाराज?
1: ठहरिए, मैं समझाता हूँ। आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए, पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया। और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार होगा।
3: महाराज की जय! महाराज की जय! महाराज की जय!
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे, और अब सुनते हैं विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित ये कार्यक्रम। शीर्षक है जानकी अम्माल।
6: ये कार्यक्रम भारत की पहली महिला वनस्पति वैज्ञानिक डॉक्टर जानकी अम्माल द्वारा वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में दिए गए महान योगदान की चर्चा करता है,
5: और विशेष रूप से ये कार्यक्रम बताता है कि कृषि के क्षेत्र में भारत को स्वावलंबी बनाने में उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण थी। और श्रोता, इसी क्रम में आपको बता दें कि इस महान वनस्पति वैज्ञानिक डॉक्टर जानकी अम्माल को सम्मान देने के लिए एनसीईआरटी के दिल्ली मुख्यालय परिसर में उनके नाम पर एक भवन भी है, जिसे हम कहते हैं जानकी अम्माल खंड।
7: कुछ तो ऐसा विशेष जरूर है भारत की मिट्टी में कि इसने एक से एक विलक्षण, प्रतिभाशाली और ऐसे असाधारण व्यक्तित्वों को जन्म दिया है जो आज करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं।
8: यदि पूछा जाए कि बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया तो तुरंत उत्तर मिलेगा, थॉमस अल्वा एडिसन ने। यदि पूछा जाए कि E=mc² का फॉर्मूला किसने दिया तो तुरंत उत्तर मिलेगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। लेकिन यदि पूछा जाए कि किसने हमें दी विश्व स्तरीय उन्नत मक्का की नायाब फसल, किसने दी हमें उच्च कोटि के गन्ने की मिठास, और किसने खिलाए इंग्लैंड में मैग्नोलिया के खूबसूरत फूल,
7: तो शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि वो महान शख्सियत हैं भारत की पहली महिला वनस्पति वैज्ञानिक जानकी अम्माल।

0: उनका पूरा नाम था ईडावलत कक्खाट जानकी अम्माल।
1: जानकी अम्माल का जन्म 4 नवंबर 1897 में केरल के तिल्लीचेरी में हुआ था, जो अब तालाशेरी के नाम से जाना जाता है। जानकी अम्माल के पिता दीवान बहादुर इड्डावलत कृष्णन तत्कालीन मद्रास जिले में उप न्यायाधीश थे और उनकी माँ का नाम देवी कृष्णन था।
0: ये वो समय था जब महिलाओं को अपने छोटे छोटे अधिकारों के लिए भी समाज से संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन जानकी का समाज इन बातों का अपवाद था। उनके समाज में स्त्रियों की शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाता था।
1: बालिका जानकी अम्माल के घर का नाम था इड्डावलत हाउस, जो समुद्र के किनारे था। स्कूल जाना, स्कूल से वापस लौटते समय समुद्र की रेत पर घरौंदे बनाना, दौड़ना और समुद्र तट के आसपास की वनस्पतियों को ध्यान से देखना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। उनके मन में इच्छा थी खूब पढ़ने की।
2: अरे हो गई स्कूल की छुट्टी, अब बताओ कहाँ चलेंगे हम लोग? समुद्र के किनारे चलेंगे ना,
3: वहाँ पर रेत के घरौंदे बनाएंगे।
2: अरे मैं तो मछलियाँ देखूंगा।
3: मैं भी। तुमने अगर आज मेरा घरौंदा तोड़ा ना तो देख लेना लड़ाई हो जाएगी।
2: अरे तुम तो हमेशा लड़ती रहती हो।
3: चलो
4: और कोई काम नहीं है।
2: चलो चलो जल्दी करो।
3: चलो।

0: जानकी चलना दौड़ लगाते हैं नारियल के उस पेड़ तक।
1: नहीं जॉन, अभी नहीं, अभी मेरा मन नहीं है।
0: अरे जानकी क्यों मन नहीं है, आओ ना, कितना मजा आएगा।
1: नहीं जाओ तुम खेलो, मैं ना कुछ देखना चाहती हूँ।
0: देखना चाहती हो? क्या देखना चाहती हो?
1: जॉन यहाँ देखो, इस गड्ढे में।
0: इस गड्ढे में यहाँ क्या है? अरे यहाँ तो समुद्र का पानी भरा हुआ है और थोड़ी सी घास है पानी में।
1: जॉन ये समुद्री शैवाल है।
0: समुद्री शैवाल?
1: हाँ, जरा देखो इसके छोटे छोटे पत्ते कितने सुंदर लग रहे हैं ना। कितने प्यारे हैं।
0: जानकी ये भी कोई देखने की चीज है, तुम्हारा तो बस यही काम है जानकी, कभी घास को देखती हो, कभी समुद्री पौधे को देखती हो और कभी पेड़ों की पत्तियों को देखती हो।
1: जॉन मैं जानना चाहती हूँ कि इस घास में ऐसी क्या खास बात है जो ये समुद्र के खारे पानी में भी बढ़ जाती है, जबकि समुद्र तट के आसपास उगने वाली साधारण घास के साथ ऐसा नहीं होता है।
0: कहती तो तुम ठीक हो जानकी, मुझे लगता है कि।
1: तुम्हें क्या लगता है जॉन?
0: कि एक दिन तुम कुछ ना कुछ बहुत बड़ा करोगी।
1: वो तो मैं करूंगी।
2: साथियों और हुआ भी ऐसा ही, स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद जानकी उच्च शिक्षा के लिए मद्रास चली गईं। मद्रास में उन्होंने क्वीन मेरी कॉलेज से स्नातक की शिक्षा पूरी की और साल 1921 में प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई से ऑनर्स की उपाधि प्राप्त की।
3: इसके बाद उन्होंने कुछ समय महिला क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाया। इसी दौरान सन 1924 में उन्हें मिशिगन विश्वविद्यालय अमेरिका से मास्टर्स करने के लिए प्रतिष्ठित बाबा स्कॉलरशिप भी मिली। फिर वे उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका चली गईं।
2: आठ साल बाद उन्हें डीएससी यानी डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि मिली। इस तरह वे वनस्पति विज्ञान में डॉक्टरेट से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी और वनस्पतिकी की प्रोफेसर के रूप में भारत लौटी और महाराजा कॉलेज ऑफ साइंस त्रिवेंद्रम में अध्यापन किया।
3: महाविद्यालय की पौध विज्ञान प्रयोगशाला में उन्होंने अपने प्रयोगों को जारी रखा। धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ने लगी। पौध विज्ञान में उनके कई प्रयोग अनूठे थे। स्थानीय किसान अक्सर उनसे परामर्श लेने आते थे। तमिलनाडु में मक्का और गन्ने की खेती होती थी, लेकिन फसल की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं थी। भारत में वैसे भी उन दिनों खाद्यान्न की कमी थी, इसलिए फसलों की गुणवत्ता और पैदावार पर ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी था। ऐसी परिस्थिति में सरकार का ध्यान प्रोफेसर जानकी अम्माल पर जाना लाजमी था।
2: प्रोफेसर जानकी को कोयंबटूर स्थित गन्ना प्रजनन केंद्र में विशेष निमंत्रण पर बुलाया गया।
4: आज डॉक्टर जानकी आ रही?
5: जी जी जी,
6: हमने बहुत मेहनत की है
4: लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
6: हाँ, कोई मिठास गन्ने में आ ही नहीं रही।
2: मक्के और गन्ने में वो बात नहीं जो हम चाहते हैं।
4: जैसे मक्के के बीज उनके मोटे मोटे,
2: उम्मीद है कि कुछ नया होगा।
6: छोटे छोटे
2: भारत को एक नए किस्म का गन्ना और मक्का मिले, यही हम चाहते हैं। इसलिए हम बरसों से अनुसंधान कर रहे हैं।
4: जानकी जी की बातों को ध्यान से सुनेंगे तो
6: कुछ ना कुछ उसका ही।
7: प्रोफेसर जानकी आपका स्वागत है।
4: धन्यवाद।
7: मैं डॉक्टर दिनकरन। प्रोफेसर जैसा कि आप जानती हैं कि इस क्षेत्र में गन्ने और मक्का की खेती तो बहुत होती है, लेकिन दूसरे देशों की फसलों के मुकाबले हमारी फसल में वो गुणवत्ता नहीं है जो होनी चाहिए।
4: जी हाँ, कुछ दिनों पहले अखबारों में भी इस विषय पर लेख प्रकाशित हुआ था।
7: जी, कुछ उदाहरण हैं जैसे मॉरिशस के गन्नों में जो मिठास है वो हमारे गन्नों में नहीं है।
4: और शायद आप कहना चाहते हैं कि मक्के के बीज भी उतने पुष्ट नहीं हैं जितने होने चाहिए।
7: जी बिल्कुल सही कहा आपने, हमें फसलों को उन्नत करने में आपकी मदद चाहिए।
4: जी मैं पूरी कोशिश करूंगी।
7: प्रोफेसर जानकी, आपको हमारी प्रयोगशाला में शोध करने की पूरी सुविधा मिलेगी। यदि कोई जरूरत हो तो जरूर बताइएगा।
4: जी जरूर जरूर बताऊंगी।
3: और इस महत्वपूर्ण शोध में प्रोफेसर जानकी जुट गईं पूरे मनोयोग से। इतिहास के भावी अलिखित पन्ने उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे।
2: और फिर जानकी अम्माल की देखरेख में तैयार हुई गन्ना और मक्का की फसल के परीक्षण का समय आ गया।
3: जब कोयम्बतूर के कृषि महाविद्यालय में मक्का और गन्ने की नई फसल का परीक्षण हुआ तो पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा।
5: हैरान हो गए हम सभी।
8: खास इंतजार था।
5: अच्छा,
8: और
5: मक्के के दाने,
8: अरे वाह,
5: बड़ी बड़ी और बहुत मीठे भी हैं।
7: के प्रयास सच में सराहनीय।
5: क्या बात है,
8: गन्ने की मिठास के बारे में क्या बात
5: है। वाह वाह, कमाल
8: कर दिया, कमाल कर दिया।
3: नई फसल के गन्ने की मिठास अभूतपूर्व थी और मक्का के तो क्या कहने, उसके दाने देखते ही बनते थे।
2: एक स्थानीय अखबार की सुर्खियों में छपा, प्रोफेसर अम्माल ने दी देश को भारतीय परिस्थितियों में पनप कर उच्च गुणवत्ता वाली मक्के की उन्नत नस्ल और गन्ने की नई मिठास।
3: विज्ञान इतिहासकार डॉक्टर सावित्री प्रीता नायर ने जानकी अम्माल के जीवन के अनेक अनछुए पहलुओं को बड़ी बारीकी से उकेरा है। वे लिखते हैं,
9: प्रयोगशाला में जानकी ने गन्ने और अन्य पौधों के साथ क्रॉस ब्रीडिंग पर काम किया ताकि भारत में फलने फूलने वाली फसल की अधिक उपज देने वाली किस्म तैयार की जा सके। वो गन्ने और मक्के की फसलों पर सफलतापूर्वक रिसर्च करने वाली पहली व्यक्ति थीं, जिन्होंने गन्ने की उत्पत्ति और विकास को समझने में मदद की।
3: इस घटना से प्रोफेसर जानकी अम्माल का नाम पूरे देश में फैल गया।
2: समय करवटें ले रहा था, इतिहास का एक और स्वर्णिम अध्याय रचा जाना था।
3: इंग्लैंड का एक खूबसूरत गांव है विजली। यहां 240 एकड़ में फैला एक बहुत बड़ा उद्यान है। इस उद्यान में लगभग दुनिया भर के फूलों की किस्में हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा परीक्षण क्षेत्र और वानस्पतिक प्रयोगशाला भी है, जहाँ फूलों और पौधों की नई किस्मों का मूल्यांकन किया जाता है।
2: मई से सितंबर महीने में इस गांव में मैग्नोलिया के फूल खिलने लगते हैं। मैग्नोलिया फूलों से पूरा विजली गांव लगभग ढक जाता है। इस खूबसूरती को देखने दुनिया भर से पर्यटक इस खूबसूरत गांव में आते हैं।
10: This is so unbelievable.
11: Really?
10: Look at them. Look at the colors.
11: This is so unbelievable.
10: इतने रंग संग में देखना बहुत ही खूबसूरत है।
11: Amazing.
10: Very lovely. Astonishing.
3: बहुत कम लोगों को पता है कि ये फूल प्रोफेसर जानकी अम्माल ने खिलाए हैं। इन फूलों की जड़ें भारत की हैं। उन्होंने कुछ फूलों की नस्लों की अनुवांशिकी पर प्रयोग करके मैग्नोलिया का खूबसूरत फूल बनाया। यह अनूठा काम उन्होंने तब किया जब वे लंदन में रहकर शोध कर रही थी। साल 1951 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें भारत में बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नवीनीकरण के लिए बुलाया था। उस समय वे लंदन में अनुसंधान कर रही थीं। तब उन्होंने अपने 3 दशक के लंबे करियर को पीछे छोड़ते हुए सरकारी सेवाओं में अपना भरपूर योगदान दिया। इतिहासकार डॉक्टर सावित्री नायर लिखती हैं,
9: वो भारत तो आ गईं, लेकिन उनके पुरुष सहयोगियों ने एक महिला का आदेश लेने से साफ इनकार कर दिया और बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया को फिर से संगठित करने के उनके कई प्रयासों को ठुकरा दिया गया। उस समय एक भी भारतीय पुरुष पौधों में अनुवांशिकी का नाम शायद ही मुश्किल से लेता होगा, लेकिन प्रोफेसर अम्माल ने अपने शोध में पौधों की क्रॉस डिसिप्लिनरी पद्धति को अपनाया और 1930 के दशक की शुरुआत में ही जैव विविधता के बारे में बात की थी। देखा जाए तो जानकी का जीवन कई लोगों के लिए एक प्रेरणा है।
2: प्रोफेसर जानकी अम्माल को 1935 में भारतीय विज्ञान अकादमी का तथा 1957 में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का फेलो चुना गया। भारत सरकार ने 1957 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया।

0: सन 2000 में भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने उनके नाम पर वर्गीकरण विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार स्थापित किया। स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में देश की अग्रणी संस्था राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT ने उन्हें सम्मान देते हुए उनके नाम पर अपने विज्ञान खंड के भवन का नाम जानकी अम्माल खंड रखा है।
1: सात फरवरी 1984 को 87 वर्ष की आयु में इस महान महिला वैज्ञानिक का निधन हो गया। वे करोड़ों लोगों के लिए, विशेषकर महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। भारत की इस प्रथम महिला वनस्पति वैज्ञानिक जानकी अम्माल को आभार सहित हमारा नमन।
2: तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम डॉक्टर जानकी अम्माल, और इसी कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अगले सप्ताह तक के लिए अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: अरे भैया रामू।
2: हाँ भैया श्यामू।
1: बड़े ढीले ढीले लग रहे हो, क्या हाल?
2: अरे भैया श्यामू, हाल बेहाल है और ये पथरी का दर्द है, निकलवानी है और जेब भी खाली है।
1: बस इतनी सी बात? चल ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल मेरे साथ, जहाँ छोटी मोटी सर्जरी सिर्फ 2,500 और बड़ी सर्जरी सिर्फ 6,000 रुपए में हो रही है।
2: अच्छा तो भैया लेके चल, अभी चल।
1: तो अभी चलो।
3: अगर आप भी हैं ग्रामीण और गरीब तबके से, तो ग्रेटर नोएडा का शारदा अस्पताल दे रहा है अच्छे इलाज का वादा। छोटे ऑपरेशन के 2,500 और बड़े ऑपरेशन के मात्र 6,000 रुपए। मरीज को बस देना होगा इम्प्लांट और सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले सामान का खर्च। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
4: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
5: The world is here।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
2: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
1: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।
3: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
1: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: धरती मेरी धरती प्रस्तुत है विज्ञान प्रसार के प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की कड़ी।
1: कभी खुशी कभी गम।

0: मम्मी मम्मी मम्मी कहाँ हो आप?
1: क्या हुआ मानव, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहा है? मैं यहाँ रसोई में हूँ।
0: मम्मी इधर आओ ना फटाफट।
1: क्या है बोल?
0: मम्मी हाँ, क्या आज इस्लाम अंकल वापस जा रहे हैं?
2: हाँ बेटा, आज उनकी कार्यशाला खत्म हो रही है ना, इसीलिए जा रहे हैं।
3: और इसीलिए मम्मी सुबह सुबह उठकर उनके सफर के लिए खाना बना रही हैं।
2: अरे मानव क्या हुआ, तू क्यों उदास दिख रहा है?
3: लो, जब इस्लाम अंकल आ रहे थे तो उनके डर से परेशान, और जब जा रहे हैं तो उनके जाने से दुखी।
4: अरे भाई कौन दुखी हो रहा है?
3: कुछ नहीं पापा, अपना मानव आज इस्लाम अंकल, ब्रज अंकल और अल्पना आंटी के जाने पर मुंह लटकाए है।
2: अरे मानव, कोई जाता है ना तो उसे खुशी खुशी विदा करते हैं, मुंह लटका कर नहीं।
0: पर मम्मी।
4: और हाँ बेटा, खुशी से इसलिए क्योंकि उससे फिर मिलना है। अब देखो, तुम दुखी होगे तो जाने वाला भी दुखी हो जाएगा ना।
3: और वैसे भी मानव, उन सबको उनके घर के लोग भी तो याद कर रहे होंगे ना। वो तो ठीक है दीदी, पर अभी तो मुझे इस्लाम अंकल से इतनी सारी बातें करनी थी, फिर पता नहीं वो कब मिलेंगे।
5: अरे मानव, ज्यादा बातें करने का मन करे तो उनके घर फोन कर लेना।
3: Exactly. हाँ, और भी मन करे तो उन्हें घर मिलाना। पर जो भी हो, मुझे किसी का जाना अच्छा नहीं लगता।
2: ओ, ये तो बहुत अच्छी बात है मानव। बेटा, बिछोड़ने का दर्द तो सबको होता है, पर फिर मिलने की खुशी भी तो होती है ना।
5: मानव ऐसे नहीं होता भाई, कोई
0: पर भैया मुझे अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं।
5: नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, आई आई आई आई।
6: नमस्ते अंकल, नमस्ते विवेक और सूर्य प्रकाश सृष्टि सबको भाई मेरी नमस्ते। देखिए हम सुबह सुबह आ गए।
0: हाँ, वो भी जाने के लिए।
6: यार सूर्य प्रकाश, ये तुम्हारा छोटा बेटा पता नहीं क्यों हमेशा मुंह फुलाए मिलता है।
7: ठीक कहा डॉक्टर इस्लाम आपने, हमने भी इसे हमेशा दुखी परेशान ही देखा है।
8: क्या बात है मानव, क्या सुबह सुबह डांट पड़ी?
0: क्या आंटी, क्या कोई सिर्फ डांट खाकर

0: दुखी हो सकता है?
1: ओ भाई, मामला गंभीर लगता है।
0: अरे कुछ नहीं भाई साहब, बस आप लोग जा रहे हैं ना, इसीलिए जरा दुखी है मानव।
1: अच्छा तो ये बात है, हमारा मानव तो हमारे प्यार में दुखी है।
2: हमसे बिछुड़ने का दुख है।
1: पर मानव, ये हवाएं, ये महासागरों का पानी, ये भूमि, ये भी रोज एक दूसरे से बिछुड़ते हैं, दूर जाते हैं, पर दुखी तो नहीं होते।
3: पता है क्यों मानव? क्योंकि ये सब जानते हैं कि फिर दोबारा मिलना भी तो है।
4: पर आंटी, हवाएं बिछुड़ती कहाँ है, साथ साथ ही तो बहती है।
2: अरे मानव बेटा, हवा का तो पता ही तब लगता है जब वो चलती है, और जब वो चली तो यानी दूर गई।
4: पर अंकल, हवा दूर जाती कहाँ है और ये चलती कैसे है?
1: ओहो, तो असली वजह ये है। मानव हमसे महासागरों, वायुमंडल और भूमि के परस्पर संबंध में हवाओं की गतिविधि कैसी होती है ये जानना चाहता है।
4: पर मुझे आपके जाने का भी दुख है।
1: देखो भाई, दुख सुख तो लगे ही रहते हैं, और दुख तो जीवन में थोड़े ज्यादा ही हैं।
2: अरे तो दुखी हुए तो कौन सा तीर मारा है।
1: भाई देखो, ऐसा है कि अभी ट्रेन जाने में समय है, तो चलो तब तक मानव को थोड़ा हवाओं, सागर, भूमि के आपसी रिश्ते को और समझा दें। अबे क्यों, क्या कहते हैं?
4: हाँ अंकल, ये ठीक रहेगा, और मेरे भी कुछ सवाल है, मैं भी पूछ लूंगी। हाँ। चलो ये बढ़िया रहेगा, क्यों मानव?
0: जी आंटी।
2: मानव, पर तुम्हें मन से और खुशी खुशी सुनना होगा इसे, फिर इसमें तुम्हें इन हवाओं और पानी के बिछुड़ने का दुख और मिलने की खुशी भी पता चलेगी।
4: वो कैसे अंकल?
3: बस सृष्टि, तुम सुनते जाओ
0: और साथ साथ नाश्ता भी करते जाओ।
1: वसुधा, वसुधा भाभी की ये बात मुझे सबसे अच्छी लगती है।
0: भाई साहब, स्पेशली आपके लिए इडली सांभर।

0: नारियल की चटनी जो आपने बनाई ना बहुत ही बेहतरीन है, मैं एक बार केरल में गया था एक कॉन्फ्रेंस में, वहाँ खाई थी ऐसी चटनी,
1: खूबसूरत।
2: उसके बाद ऐसी खाने को दोबारा मिली ही नहीं।
0: तो भाई ये हवा की चादर जो हमारी धरती के आसपास लिपटी हुई है इसे वायुमंडल कहते हैं।
3: और इस वायुमंडल की अलग अलग परतें हैं जो मुख्यतः हमें बाहरी अंतरिक्ष के कई प्रहारों से बचाती हैं।
2: भाई हवाएं तुम्हारे धुले हुए गीले कपड़े सुखाती हैं, शक्तिशाली व्यापारिक हवाएं महासागर पार करवाती हैं, और अत्यधिक ऊंचाई पर मौजूद जेट स्ट्रीम यानी जेट धारा अपने हर घुमाव से धरती का मौसम बदलती है।
3: और ये सब धरती के वायुमंडल की गतिविधियों को दर्शाता है।
0: सूरज की गर्मी से गर्म हुई भूमध्य रेखा से शक्तिशाली हवाएं नीचे से ऊपर उठती हैं और बाकी बची धरती को ऊष्मा पहुंचाती हैं, और साथ ही साथ धूल मिट्टी को पूरी पृथ्वी पर इधर से उधर करती हैं।
3: और महासागरों के ऊपर से होती हुई हवाएं अपने साथ महाद्वीपों पर नमी लाती हैं, जिससे बारिश और हिमपात होता है।
4: पर ये हवाएं चलती कैसे हैं?
2: मानो बेटा, हर हवा इसलिए चलती है क्योंकि सूरज पूरी धरती को एक जैसा गर्म नहीं कर पाता।
3: धरती का वायुमंडल सूरज से सीधे ऊष्मा बहुत सूक्ष्म मात्रा में पाता है। असल में सूरज पहले धरती को गर्म करता है और ये धरती अपने ऊपर बहती इन हवाओं में ये ऊष्मा छोड़ देती है।
4: ये तो हमें पता है आंटी कि धरती पहले गर्म होती है और इससे निकली ऊष्मा से हवा नीचे से ऊपर की ओर गर्म होती है।
2: वाह सृष्टि वाह, शाबाश। अच्छा आगे क्या होता है?
4: अंकल आगे अब अंकल जब हवा गर्म होती है तो वो ऊपर उठना शुरू करती है। इस गर्म हवा के ऊपर उठने से नीचे एक कम दबाव वाला क्षेत्र बनता है जो ठंडी हवाओं को खींचता है।
0: अरे बहुत खूब सृष्टि बेटा, ये सब तुमने कैसे जाना?
4: अंकल कुछ आपने बताया था और बाकी का विवेक भैया ने बता दिया था।
3: वाह भाई वाह, बहुत खूब विवेक।
5: थैंक यू आंटी।
3: अच्छा सृष्टि ये बताओ, ये ठंडी हवा जो गर्म हवा की जगह लेने चली आती है ये कहाँ से आती है?
4: ये मैं बताऊँ आंटी?
3: हाँ हाँ बताओ।
4: ये ठंडी हवा वहाँ से आती है जहाँ या तो धरती ने सूरज से आती गर्मी को जरूरत से कम सोखा हो या फिर सोखी गई गर्मी को वायुमंडल की ओर ना छोड़ा हो, है ना? जैसे ध्रुवीय प्रदेशों में होता है।
5: करेक्ट, बिल्कुल सही।
2: भाई सृष्टि और मानव तो बहुत होशियार हैं।
3: भाई साहब ये होशियार हैं और इन्हें होशियार बनाता है विवेक।
5: बस अभी मैं तो बस इन्हें सब बताता रहता हूँ, अब ये याद रखते हैं तो इनकी होशियारी है।
0: भाई सूर्य प्रकाश जी, आपके तो तीनों बच्चे कमाल के हैं भाई।
3: हाँ तो भाई, जैसा सृष्टि और मानव ने अभी बताया ये कई स्तर पर हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसा हमने पिछली बार बताया था, स्थानीय स्तर पर यानी सागर से तट और तट से सागर की ओर जाने वाली हवाएं, या फिर वैश्विक स्तर पर जिसमें गर्म भूमध्य रेखा से हवाएं ठंडे ध्रुवीय प्रदेशों की यात्रा करती हैं। हाँ।
4: और इनसे पूरे वायुमंडल और धरती का एक पूरा संचरण बनता है, है ना?
2: हाँ सृष्टि, पर ये वायुमंडल का संचरण होता क्यों है?
5: अंकल मैं बताऊँ?
2: हाँ हाँ बताओ बताओ, तुम ही बताओ।
5: अंकल जैसे आपने बताया था कि महासागरों में संचरण बड़े बड़े पाश यानी गायर के द्वारा होता है, इसी तरह धरती का वायुमंडल भी मुख्यतः तीन बड़े बड़े लूप या कहें पाश में संचारित होता है। पहला है हेडले सेल, दूसरा पेरल सेल, और तीसरा पोलर यानी ध्रुवीय संचरण। ठीक
3: भाई, वाह विवेक वाह, तुमने तो बहुत कुछ पढ़ रखा है, शाबाश विवेक।
5: थैंक यू आंटी।
3: भाई अपने विषय के अलावा अन्य विषयों की भी पूरी जानकारी रखनी चाहिए।
0: पूरी नहीं तो थोड़ी बहुत तो रखनी ही चाहिए। इससे हमारे सोचने समझने की क्षमता और विकसित होती है।
2: अच्छा तो अब ये समझें कि ये तीन तरह के संचरण कैसे बनते हैं। जैसा कि तुम जानते हो कि ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर का वायुमंडल ठंडा होता है और भूमध्य रेखा के ऊपर गर्म।
4: पर अंकल इन इलाकों के नीचे तो धरती भी ठंडी और गर्म होती है, तो इसमें क्या खास बात है?
1: लगता है मानव का दुख कुछ कम होने लगा है।
0: बस ऐसे ही होना चाहिए, ना किसी बात पर ज्यादा दुखी ना किसी बात पर ज्यादा खुश। अच्छा बताओ, अगर पृथ्वी का वायुमंडल बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं तो क्या होता?
5: तो फिर अंकल ध्रुवीय क्षेत्रों का वायुमंडल ठंडा और ठंडा होता चला जाता और भूमध्य रेखा का वायुमंडल और गर्म होता चला जाता।
2: बिल्कुल सही विवेक। पर असल में होता क्या है कि धरती की सतह से गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं और ठंडे ध्रुवीय इलाके की ओर चलती हैं और ठंडी हवाओं को धक्का देती हैं, फिर ये ठंडी हवाएं धरती की सतह से होती हुई भूमध्य रेखा की ओर जाती हैं।
3: और इस प्रक्रिया को कन्वेक्शन यानी संवहन कहते हैं और इस कारण पृथ्वी का तापमान ज्यादा असंतुलित नहीं हो पाता।
0: अच्छा बच्चों ये बताओ कि अगर धरती अपनी धुरी पर नहीं घूमती तो हवाओं का क्या होता?
4: अंकल तब भी हमारा वायुमंडल भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक संचरण करता।
0: शाबाश। पर धरती पर अपनी धुरी पर न घूमने के कारण हवाओं के छह लूप नहीं बनते।
4: छह लूप? कौन से छह लूप?
2: अरे भाई हेडलेस सेल, फेरल सेल और ध्रुवीय संचरण, ये नहीं होते ना?
4: पर अंकल ये तो तीन ही है।
5: अरे मानव ये तीन उत्तरी गोलार्ध में बनते हैं और तीन दक्षिणी गोलार्ध में। अब समझा कितने हुए लूप?
4: समझा, छह हुए।
1: बिल्कुल सही।
3: हाँ तो दोनों गोलार्धों में बनने वाले ये तीन तीन लूप तुम जानते ही हो कि कोरियोलिस बल के कारण बनते हैं।
4: हाँ हाँ आंटी ये तो पता है।
3: तो बस इसी कोरियोलिस बल की वजह से पृथ्वी को ये अनोखा वायुमंडलीय संचरण मिला। हेडलेस सेल में गर्म हवा भूमध्य रेखा से उठती है और 30 डिग्री अक्षांश पर, जिसे हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं, ये गर्म हवा जो अब तक कुछ ठंडी हो चुकी होती है नीचे की ओर गोता लगाती है और काफी सारी हवा वापस भूमध्य रेखा पर पहुंच जाती है। ये पाश हेडलेस सेल कहलाता है।
2: हाँ, फिर भी बाकी कुछ बची हवाएं ध्रुवों की ओर चल देती हैं और करीब 60 डिग्री अक्षांश पर ये हवाएं भूमध्य रेखा की ओर आने वाली ठंडी ध्रुवीय हवाओं से टकराती हैं। फिर ये थोड़ा ऊपर उठकर दोबारा भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। इस पाश को फेरल सेल कहते हैं।
0: और फिर जो ध्रुवों से आने वाली हवाएं हैं वो भी धरती की ऊष्मा सोख कर ऊपर उठती हैं और वापस अपने उत्पत्ति के स्थान यानी ध्रुवों की ओर चल देती हैं। इसे ध्रुवीय संचरण सेल कहते हैं।
4: अरे वाह ये तो कमाल है।
0: अरे मानव बेटे कमाल तो ये है कि ये सभी हवाएं मिलती हैं और फिर चली जाती हैं, पर बिछुड़ने के दुख की बजाय अपने अपने कार्यों में पूरी निष्ठा से लगी रहती हैं।
2: देखो बच्चों, जो हेडलेस सेल बनता है उसमें ही उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बनती हैं।
4: अंकल ये व्यापारिक हवाएं इसलिए व्यापारिक कहलाती थी ना क्योंकि इन्हीं हवाओं के झोंकों पर पाल वाले जहाज चलकर व्यापार के लिए महासागरों को पार कर पाते थे।
3: हाँ बेटी बिल्कुल ऐसा ही था।
0: तो इन्हीं हवाओं के गर्म होने और ठंडा होने से निम्न दाब और उच्च दाब बनते हैं और ये संचरण चलता रहता है, कभी धीरे और कभी बहुत तेज।
4: हाँ जैसे तूफान, चक्रवात आदि। हाँ मानव।
6: मैं देखती हूँ। अरे नमस्ते मिसेस मल्होत्रा।
4: नमस्ते आंटी।
7: नमस्ते पुत्र। नमस्ते भाई साहब।
8: नमस्ते नमस्ते जी नमस्ते।
7: असल में हैप्पी ने बताया कि आज आप लोग जा रहे हैं इसीलिए मिलने चली आई।
8: अच्छा किया, अच्छा किया। आइए आइए आइए बैठिए बैठिए बैठिए।
6: लीजिए मिसेस मल्होत्रा चाय लीजिए।
7: थैंक यू जी। वो अपना हैप्पी आपकी सारी बातें मुझे बताता रहता है।
8: अच्छा, सारी बातें हैं।
7: जी बहुत ही रोचक जानकारियां दी आपने।
0: देखिए एक बात मैं कहना चाहूंगा कि हैप्पी और मानव दोनों ही बहुत होशियार बच्चे हैं।
7: ओ जी हैप्पी को आपसे कुछ सवाल पूछने थे जी।
0: क्यों नहीं पूछो बेटा बोलो।
9: अंकल इस धरती विच कितने महासागर हैं?
4: मैं बताता हूँ, 5। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, एंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। और जानते हो ये सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं।
2: शाबाश मानव, भाई तुम्हें तो बहुत अच्छी जानकारी है।
9: अंकल, सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है?
4: प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और सबसे गहरा है। पता है, प्रशांत महासागर के मेरिनास ट्रेंच में तो गहराई 11 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यानी इसमें भूमि पर मौजूद एवरेस्ट पर्वत पूरा समा सकता है, क्योंकि उसकी लंबाई 8.5 किलोमीटर है। और सबसे छोटा और उथला महासागर है आर्कटिक महासागर।
9: आर्कटिक महासागर, थैंक यू मानव।
4: ठीक है, कोई बात नहीं।
5: एक मिनट हापी, ये क्या कर रहा है? अच्छा, तो तुम अपना होमवर्क हमसे करवाने आए हो?
9: हाँ विवेक भैया।
5: लो भाई, मुझे लगा तुम्हें वाकई महासागरों में रुचि है।
0: भाई अब तो कुछ सवाल हमें भी तुमसे पूछने होंगे। हाँ।
4: पर अंकल, हम आपके सवालों का जवाब कहाँ दे पाएंगे?
0: अरे दे पाओगे, बिल्कुल दे पाओगे। अच्छा ये बताओ, महासागरों के हम पर उपकार क्या है?
4: महासागर हमें खाना देते हैं और खनिज भी देते हैं,
9: और हमें तेल और गैस भी तो देते हैं।
4: और क्या देते हैं? बस इतना ही देते हैं।
2: अच्छा, और ये जलवायु, बारिश, मौसम, ये सब नहीं मिलते तुम्हें महासागरों, वायुमंडल और भूमि के परस्पर संबंधों से?
0: अच्छा ये बताओ, महासागर और वायुमंडल जो मिलकर एक इकाई के रूप में आपसी समन्वय से काम करते हैं, इससे तुम्हें क्या सीख मिलती है?
4: अंकल, यही कि अपने सारे काम पूरी निष्ठा लगन से कीजिए और अपने काम दूसरों पर मत डालिए। और मानव, मिलने बिछुड़ने के दुखों से ऊपर उठकर अपने लक्ष्य निर्धारित कीजिए। समझे?
8: भाई साहब, आपकी ट्रेन का समय होने वाला है, अब चलें।
0: अच्छा भाई विवेक, सृष्टि, हैप्पी और मानव, हम चलते हैं।
4: लो अंकल, मानव फिर दुखी हो गया।
0: अरे मानव बेटा, इतनी बातें समझाई और तुम फिर भी दुखी? देखो बेटे, हमें तो तुमसे बहुत उम्मीद है। मैं तो चाहूंगा कि तुम प्रकृति के इन रहस्यों को और समझो और दुनिया के सामने लाओ। तुम हवा पानी की तरह हमारे और सबके दोस्त बनो, जो मिले तो खुशी के लिए और बिछड़े तो भी खुशी के लिए।
4: भाई जैसे

0: पानी हवा से बिछड़ता है बारिश बनकर हमारी खुशी के लिए, समझे मानव बेटा?
1: हाँ समझ गया। अब मैं दुखी तो होऊंगा पर इस खुशी के लिए कि हम फिर से मिलेंगे। अंकल, आपसे मैं हमेशा डरता रहता था पर वो डर गलत था, मुझे आपकी हमेशा याद आएगी।
2: बेटे मानव, इस याद को ही हमारी दोस्ती समझना। और हाँ, हमारी दोस्ती कैसी हो?
1: हवा और पानी जैसी।
3: शाबाश बेटा, शाबाश।

हम जानते हैं कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। सूक्ष्म जीव, वनस्पतियां व विभिन्न जीव जंतु यहाँ जीवन के विविध रूपों में समन्वय बनाए हुए हैं, जिसे हम जैव विविधता कहते हैं। जीवन का हर एक रूप, या कहें कि जीवों की एक प्रजाति, अपने अस्तित्व के लिए दूसरी प्रजाति पर निर्भर होती है। पृथ्वी पर जीवन के विविध रूपों की जब हम बात करते हैं, तो हम मानव प्रजाति की भी बात करते हैं। यदि हम अपने पर्यावरण को समझना और उसे सुरक्षित बनाए रखना चाहें, तो हमें पृथ्वी पर उपस्थित जीवन के विभिन्न रूपों की परस्पर निर्भरता और जीवन के लिए हवा, पानी व मिट्टी जैसे प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को समझना होगा। पृथ्वी पर जीवन लाखों करोड़ों वर्षों के दौरान पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पनपा है। जीवों की वे प्रजातियां पृथ्वी पर रही है जिन्होंने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया था। ऐसे परिवर्तन भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, चक्रवात और इसी प्रकार के अन्य प्राकृतिक कारणों से भी हुए होंगे। अक्सर ये परिवर्तन उन प्रजातियों द्वारा लाए गए थे जो विकास की सीढ़ी पर ऊंचे पायदान पर बैठी हैं। उन्होंने अपनी आवश्यकताओं और विकास के लिए पर्यावरण पर नियंत्रण करने की कोशिश की, और यही मानव प्रजाति ने अपने नाजुक संतुलन पर टीके पृथ्वी ग्रह पर भी किया। हमें विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति हम सदियों से परंपरागत स्वरूप से जलावन लकड़ी, कोयला व पेट्रोलियम जैसे प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त करते आ रहे हैं। आज इस बात को सभी मानते हैं कि कोयले के दहन जैसी मानवीय गतिविधियों से ही वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड व दूसरी ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी ग्रह का तापमान बढ़ने लगा है और पृथ्वी दिनों दिन गर्माती जा रही है। आज हमारे ग्रह पर कई खतरे मंडरा रहे हैं, जो मुख्यतः बदलती जलवायु, बिगड़ता पर्यावरण, प्रजातियों का तेजी से सफाया होना, शुद्ध जल की घटती उपलब्धता, नदियों का समुद्र में पहुंचने से पहले ही सूख जाना, बंजर होती उपजाऊ जमीन, ऊर्जा स्रोतों की बिगड़ती हालत, बढ़ती बीमारियां, तेजी से बढ़ती जनसंख्या और उसका पेट भरना, ये सब समस्याएं हैं। इन सब की वजह से आज मानव का अस्तित्व ही खतरे में आ पड़ा है। आज हम चादर से अधिक पैर पसार रहे हैं। बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों से अधिक की आवश्यकता है। मानवीय आवश्यकताओं की मांग पृथ्वी की क्षमता से परे है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक प्राकृतिक साधनों का दोहन कर रहे हैं, और जिससे आज विकासशील देशों के अरबों लोग संकटों के साए में जी रहे हैं। इस दिशा में विश्व का ध्यान आकर्षित करने और यह बताने के लिए कि पर्यावरण वह है जहां हम रहते हैं, और विकास को एक नए परिप्रेक्ष्य में देखने व समझने की कोशिश करने के लिए कि सभी के सहयोग से हम पृथ्वी ग्रह पर जीवन और जैव विविधता को बनाए रखेंगे, लोगों को चुनौतियों के साथ संभावित समाधानों के प्रति जागरूक करते हुए पृथ्वी ग्रह को संभावित विपदों से बचाना भी है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विज्ञान प्रसार 19 भारतीय भाषाओं में 52 कड़ियों वाला धारावाहिक धरती मेरी धरती विज्ञान प्रसार भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त शासी संस्था है, जिसका उद्देश्य विज्ञान संचार को बढ़ावा देने के साथ लोगों में वैज्ञानिक जागरूकता का प्रसार करना है। इस धारावाहिक के माध्यम से पृथ्वी ग्रह के विभिन्न पहलुओं जैसे पृथ्वी के निर्माण, स्थलमंडल, महासागरों, वायुमंडल, जैव मंडल और जैव विविधता पर हम बात करेंगे। मैं यह आशा करता हूं कि धरती मेरी धरती धारावाहिक नई पीढ़ी को पूरे ब्रह्मांड में जीवन को पनाह देने वाले इस पृथ्वी ग्रह को बनाए रखने के लिए प्रेरित करेगा।

0: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।
1: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
2: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
1: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: Bingo on Malaysia card, the end. Chicken Gunya card, the end. Dimagi Bukhar ka, the end.
1: Tara! तुम कर क्या रही हो तारा?
0: तारा लड़ रही है अप्पा मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से।
1: ओह।

0: मच्छरों पे कैसे करना है वार, ये बताएंगे अगली बार।
1: तुम सब भी हो जाओ तारा की तरह तैयार।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूं, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
6: बिल्कुल सोचा है पापा।
5: क्या सोचा है?
6: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
5: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
6: जी पापा।
5: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
6: हाँ पापा बिल्कुल।
7: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
8: So where are you? The world is here at Sharda University.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। भाई जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है, इसलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुट जाते हैं, अच्छी अच्छी हेल्थ की बातें आप तक पहुंचा रहे होते हैं। कोरोना का समय हम सबने देखा और जहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से मारा मारी थी, अगर ये ऑक्सीजन हमें क्षण भर न मिले तो सच बात तो ये है कि जीवन समाप्त हो जाएगा। इस ऑक्सीजन का किस तरीके से हम ख्याल रख सकते हैं, किस तरीके से नेचर का ख्याल रख सकते हैं, कुछ ऐसी ही बातें, यानी कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर अगर आप 5 फल और सब्जियां खाएंगे तो शरीर को भरपूर रूप से मिलेगी आपको एनर्जी। जी हाँ, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कैसे कंट्रोल रखें। लेकिन इससे हटकर एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप पौधे लगाएंगे, किसी पौधे को सींचेंगे, तो निश्चित तौर पर वो एक बड़ा वटवृक्ष का रूप धारण कर लेगा जो कि आगे चलकर आपको ऑक्सीजन देगा ही देगा। इसलिए पर्यावरण का ख्याल रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाले कुछ फूड्स के बारे में जानते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस तरह पानी की जरूरत होती है, उसी तरह ऑक्सीजन भी बहुत जरूरी है। ये कोशिकाओं को बनाने के साथ साथ उनके बेहतर कार्यों में मददगार होती है। ऑक्सीजन हवा के जरिए शरीर को प्राप्त होता है। हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल काफी कम होता है। ऐसे में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ प्रयास की जरूरत है। शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ खाद्य पदार्थों की मदद ले सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में। पालक से करें ऑक्सीजन की कमी दूर, कैसे जानते हैं। पालक स्वास्थ्य के लिए काफी हेल्दी होता है। ये न सिर्फ शरीर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है, बल्कि इससे आप शरीर में आयरन की कमी को भी दूर कर सकते हैं। जी हाँ, आयरन की मदद से शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव बेहतर होता है, जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी दूर होती है। इसके साथ ही ये आपके शरीर की मांसपेशियों की मजबूती को भी बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं शकरगंद से करें ऑक्सीजन की कमी दूर, कैसे। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर आप शकरगंद का सेवन कर सकते हैं। शकरगंद एंटीऑक्सीडेंट्स का काफी अच्छा स्रोत है। इसकी मदद से आप शरीर के अंगों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा ये मैग्नीशियम और पोटेशियम का भी अच्छा स्रोत होता है, जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी से होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। बात ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाए एवोकाडो, यानी शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने में एवोकाडो भी काफी हेल्दी माना जाता है। इससे ब्रेन में ऑक्सीजन का प्रवाह सही तरीके से होता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन के स्तर में सुधार ला सकते हैं। बात नींबू की, नींबू है असरदार। नींबू अगर आप शिकंजी में मिलाकर पीते हैं तो जाहिर सी बात है नींबू यूं कहें कि शिकंजी के बगैर अधूरी है। नींबू अगर आप सलाद में डालते हैं तो सलाद स्वादिष्ट हो जाता है। नींबू पानी पीते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बड़ा ही लाभदायक है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी

0: पर नींबू के रस का सेवन करें। नींबू के रस में मौजूद गुड़ शरीर में ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करने में असरदार होता है। इसके साथ ही इसमें मौजूद पोटेशियम आपके माइंड को अलर्ट रखने में असरदार होता है। बात तरबूज की, जी हाँ, तरबूज गर्मी के सीजन में हर रोज अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा मिलेगा और गर्मी के मौसम में बहुत तादाद में देखा जाता है तरबूज। जी हाँ, तरबूज से ऑक्सीजन की कमी से राहत मिलती है, कैसे जानते हैं। शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए आप तरबूज का सेवन कर सकते हैं। दरअसल तरबूज में अल्कालाइन की अधिकता होती है जो आपके शरीर के पीएच लेवल को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा तरबूज में बीटा कैरोटीन और लाइकोपिन मौजूद होता है जो शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में असरदार है। तो कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और हाँ, नेचर का ख्याल रखें। नेचर का ख्याल रखेंगे तो भरपूर मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
1: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

जा रहे हैं कहाँ, ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो संग बाय लकी अली, कंपोजर्स माइकी मैक्लेरी और सूरज कुलवडी, लिरिसिस्ट कौसर मुनीर। तू जाने है कहाँ, सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: Ti quiero, ti quiero,
1: ti quiero, ti quiero.
2: Let's go, boy!

0: ऑडियो ओवर गो।
1: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: चिलूंगी पोर।
1: हौन सिंह, आप हमारे साउथ में?
2: अरे हाँ भाई, लेकिन हमारे साउथ फैंस खातिर भी तो कुछ होके के चाहिए ना। गाना बुझे कि नहीं?
1: हाँ
2: चलो धूम मचाते हैं।
1: फिक्स।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। ऑडियो क्रेडिट्स परफॉर्म्ड बाय बंजारे एंड सिमरन कौर, रिटन बाय बंजारे एंड सिमरन कौर, कंपोज्ड बाय बंजारे, म्यूजिक प्रोडक्शन बाय रॉनी। सो लेट्स एंजॉय इट। ऑल योर सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: सॉन्ग क्रेडिट्स सिंगर्स नेहा कक्कर, रॉमी, अरुण एंड इक्का, रिक्रिएटेड तनिष्क बागची, लिरिक्स शब्बीर अहमद, ऑल योन टिप्स ऑफिशियल, सो लेट्स एंजॉय इट ऑल योन सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर हम एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत से ही लाभ गई। इसी के अंतर्गत एक खास बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। दोस्तों, जब भी हम सफर पर निकलते हैं या निकलने से पहले हर चीज की प्लानिंग करते हैं, नया स्कूटर या कार खरीदने से पहले हर विकल्प पर सोचते हैं, तो फिर अपने परिवार की योजना बनाने से पहले क्यों नहीं सोचते? ये तो जिंदगी भर का फैसला है। आपके परिवार को नियोजित रखने के लिए आपके पास गर्भ निरोधक के कई विकल्प हैं। जब आपके पास सही जानकारी होगी तभी आप अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर, अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में सही फैसला ले पाएंगे। तो झिझके नहीं, आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और अपने सभी गर्भ निरोधक विकल्प जानें। ये खास जानकारी सुनो शारदा 90.8 FM के माध्यम से स्मार्ट के सहयोग से सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत मैं आप तक पहुंचा रहा था। अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
3: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: महावारी के दौरान क्या करें और क्या ना करें। महावारी के दौरान एक ही पैड का लंबे समय तक बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए।
2: आप किसी भी ब्रांड के सैनिटरी पैड का उपयोग कर सकते हैं। महावारी के समय दिन भर में कम से कम 2 से 3 बार सैनिटरी पैड को बदलना चाहिए। पैड को ज्यादा गीले होने पर वो फट सकता है, जिससे सैनिटरी पैड में मौजूद हानिकारक रसायन आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
1: याद रखें, महावारी के दौरान स्वच्छता का महत्व और बढ़ जाता है। गंदे, मलिन, अस्वच्छ हाथों से सैनिटरी पैड बदलने से हेपेटाइटिस बी जैसे वायरस और संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है।
2: कभी कभी योनि पर पानी का अत्यधिक छिड़काव उसे बैक्टीरिया के संपर्क में ला सकता है। योनि एक ऐसा अंग है जो खुद को स्वयं साफ कर सकता है, इसलिए उसे ऐसे ही छोड़ दें।
1: असुरक्षित यौन संबंध अपने आप में बहुत जोखिम भरा है और ऐसे में रक्त स्राव का मिलना और जोखिम भरा हो जाता है। महावारी के दौरान यदि महिलाएं असुरक्षित यौन संबंध बनाती हैं, तो यौन जनित रोग हेपेटाइटिस बी और एचआईवी का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।
2: महावारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
1: ये खास जानकारी आप सुन रहे थे सुनो शारदा 90.8 FM पर यूनिसेफ के सहयोग से।
3: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं हल्दी, मेथी और सौंठ का एक साथ अगर आप सेवन करते हैं तो शरीर की 5 समस्याओं से तुरंत आपको छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ, हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। कैसे, आइए जानते हैं इसके कुछ लाभ के बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण के क्या क्या फायदे हैं। तो एक्सपर्ट बताते हैं कि हमारे देश में मसालों का भंडार है। घर की रसोई हो या फिर किसी ढाबे और रेस्टोरेंट की रसोई, हर जगह आपको मसालों की खुशबू आसानी से मिल जाएगी। मसालों का कई मिश्रण ऐसा होता है जो आपके शरीर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इन मिश्रण में मेथी, हल्दी और अदरक यानी सौंठ का मिश्रण है। मेथी, अदरक और हल्दी के मिश्रण से कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है। अब जानते हैं कि अदरक, मेथी और हल्दी से सेहत को होने वाले फायदे क्या क्या हैं। बात सामने आती है कि उल्टी और दस्त में किस तरीके से आराम करता है। अगर आपको उल्टी या फिर जी मिचलाने जैसा अनुभव हो रहा है तो ऐसी स्थिति में अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण फायदेमंद हो सकता है। साथ ही इससे दस्त की परेशानी को कम करने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं कि हड्डियों को मजबूत कैसे बनाएं। अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक और कई विटामिन्स का संयोजन होता है जो आपकी हड्डियों की मजबूती को बढ़ावा दे सकता है। नियमित रूप से इस मिश्रण के सेवन से हड्डियों को विकास और मजबूती में मदद मिल सकती है। बात जोड़ों के दर्द में किस तरीके से आराम मिलता है, तो हल्दी, मेथी और अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है जो शरीर की सूजन को कम कर सकता है, साथ ही जोड़ों में होने वाले दर्द से आराम दिला सकता है।

सालों की तासीर भी गर्म होती है, जिससे मांसपेशियों को रिलैक्स महसूस होता है। अगर आप अपने जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, तो हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन जरूर करें। बात इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। शरीर की कमजोर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन कर सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर रूप से मौजूद होते हैं, जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इससे संक्रमण और वायरल बीमारियों से दूर करने में मदद मिल सकती है। बात कफ की परेशानी को कैसे कम करें। तो जिन लोगों को कफ की परेशानी होती है, उन लोगों के लिए अदरक, हल्दी और मेथी का मिश्रण फायदेमंद होता है। दरअसल इन मसालों का मिश्रण फायदेमंद होता है, जिससे वात कफ की परेशानी कम हो सकती है, साथ ही अन्य बीमारियां भी दूर होती हैं। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरो साधन 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

0: तो इस तरह सुपर हीरो जल रक्षक ने पानी बचा के पूरी दुनिया को बचाया।
1: वाओ, जल रक्षक की कहानी तो कमाल है अप्पा।
0: जल रक्षक है नाम हमारा, पानी बचाना काम हमारा, खुद का पानी खुद निगरानी। तारा अब तुम सो जाओ, कल सुबह चमन तुम्हारे साथ खेलने आने वाला है।
1: बहुत मजा आएगा।
2: हाय तारा।
1: ओह हाय चमन, आओ मेरे साथ फल खाओ, फिर हम खेलेंगे।
3: मैं बस साबुन से हाथ धोकर आता हूँ।
1: अरे चमन पानी वेस्ट कर रहा है, लगता है सुपर हीरो जल रक्षक को फिर से पानी बचाना पड़ेगा।
2: अरे तारा ये क्या?
1: तारा नहीं, जल रक्षक तारा।
4: जल रक्षक है नाम हमारा, पानी बचाना काम हमारा, खुद का पानी खुद निगरानी।
1: हर दिन हर व्यक्ति को जितना पानी पीने और खाना बनाने में लगता है, लगभग उतना ही पानी एक व्यक्ति साबुन को हाथ पर या बर्तन पर मलते समय, ब्रश करते समय या दाढ़ी बनाते समय नल को खुला रखने से बर्बाद कर देता है।
3: अच्छा, मैंने तो ये सोचा नहीं था तारा। ओ, मेरा मतलब जल रक्षक तारा।
1: और नल या पाइप में केवल एक लीकेज से ही हर दिन लगभग उतना पानी बर्बाद हो जाता है जितना एक व्यक्ति एक दिन में घर के सारे काम करने के लिए उपयोग करता है।
3: अरे बाबा रे,
1: आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें शुद्ध पानी नहीं मिलता। जरा सोचो चमन, ये समस्या है कि नहीं? मुझे लगता है ये बहुत बड़ी समस्या है।
3: हाँ तारा, सच्ची ये बहुत बड़ी समस्या है।

0: Okay.
1: Tara!
0: Tapa!
1: तारा मैं थक गया हूँ, मैं थोड़ा सा पानी पी कर आता हूँ, ठीक है?
2: पीने का पानी? चमन रुको, हाथ को खरी में डुबोने से ये पानी दूषित हो गया है।
3: हैं? लेकिन पानी दिखने में तो बिल्कुल साफ है।
2: पानी दिखने में साफ हो सकता है, पर जरूरी नहीं कि ये पीने लायक भी हो। पता है, कुछ जल स्रोतों जैसे कम गहरे हैंडपंप का पानी भी दिखने में साफ होता है, पर पीने के लिए सुरक्षित नहीं होता।
3: हैं?
2: पानी में जीवाणु, विषाणु या कई प्रदूषक तत्व हो सकते हैं, जो आंखों से नहीं दिखाई देते, और दिखने में पानी साफ लगता है। इसीलिए बिना पानी की जांच किए हम नहीं जान सकते कि पानी पीने के लिए सुरक्षित है या नहीं।
1: अरे बाबा रे, तो फिर

0: बात तो ठीक है जल रक्षक तारा, पर पानी की जांच होगी कैसे?
1: चलो चलो अप्पा से पूछते हैं।
2: ओके
1: अप्पा।
3: अब सरकार की ओर से हर ग्राम पंचायत को जल जांच किट दी जा रही है और हर एक ग्राम पंचायत से 5 महिलाओं को ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिससे हर महीने अपने पंचायत के सभी जल स्रोतों की जल गुणवत्ता जांच और स्वच्छता निरीक्षण सुनिश्चित हो।
2: वाह अंकल, आप भी जल रक्षक?
3: हमारी पूरी फैमिली ही जल रक्षक है।
4: जल रक्षक है नाम हमारा, पानी बचाना काम हमारा, खुद का पानी खुद निगरानी।
2: मैं भी बनूंगा जल रक्षक।

0: पानी में गंदे हाथ या गंदे बर्तन?
1: नो नो नो नो,
2: समझ गया।
3: अब मैं भी जल रक्षक बन गया।
1: जल रक्षक है नाम हमारा, पानी बचाना काम हमारा, खुद का पानी खुद निगरानी।
4: कहीं पानी बर्बाद हो रहा है,
3: लगता है वहाँ जल रक्षकों की जरूरत है।
4: चलो।
0: तुम सब भी जल रक्षक बन सकते हो, आज से अभी से शुरू करो, खुद का पानी खुद निगरानी।
5: आई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
6: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक। समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: सो वेयर आर यू? द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा University.
4: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

0: ओ हीरो, मिले बिना जाएगा?
1: कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया।
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
4: बिल्कुल सोचा है पापा।
3: क्या सोचा है?
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
3: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया?
4: जी पापा।
3: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
4: हाँ पापा बिल्कुल।
5: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
2: So where are you? The world is here at Sharda University.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब होटल मॉल स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन, आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक,
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
6: चोरी चोरी देखे जाए पिया, गोरिया नृत्य करे थुमकिया थुमकिया थुमकिया।

0: हाय, मैं उरन विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: Tumhara tank chal raha hai. Abandon tank right now.
6: No sir, we're not abandoning my tank. My gun is still working. I'll get these bastards.

0: के लिए भी एक मिसाल है सर।
1: अगला परमवीर चक्र हमारे रेजिमेंट की मैं लेकर आऊंगा।
2: चलती है सांसें जिसकी, हर शख्स वो जिंदा है, जिसके जीने का मकसद हो वही तो बंदा है।
1: सर लड़ाई होने वाली है।

0: हम फौजी हैं, जस्ट फॉलो ऑर्डर्स।
1: और तो उसे भी मिला था अब जाने के लिए कमबख्त माना नहीं। लड़ता रहा।
2: एक मिनट, एक इंच पीछे नहीं हटेगा।
3: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
4: Papa कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
5: बिल्कुल सोचा है पापा।
4: क्या सोचा है?
5: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
4: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
5: जी पापा।
4: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
5: हाँ पापा बिल्कुल।
6: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
7: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University. Sharda School of Media, Film and Entertainment, जहाँ सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: क्या आपको पता है डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी बीमारी कैसे फैलती है? ये फैलती है मच्छरों के काटने से।
2: खुद को और अपने परिवार को डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए अपनाएं ये आसान उपाय।
1: हमेशा मच्छरदानी में ही सोएं।
2: दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं।
1: मच्छर अगरबत्ती जैसी मच्छर रोधी उपायों को जरूर अपनाएं।
2: पूरी बांह वाले कमीज, पैंट और मोजे पहने
1: और मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए
2: पानी की टंकी को पूरी तरह ढक कर रखें।
1: घर के भीतर तथा आसपास कहीं भी पानी जमा न होने दें।
2: फ्रिज के पीछे नीचे की तरफ लगी हुई ट्रे, टायर और खुले में रखे कोई भी बर्तन में जमा पानी को नाली में बहा दें।
1: कूलर और गमले वगैरह को हर सप्ताह खाली करके सुखाएं
2: और गड्ढों को मिट्टी से भर दें जिससे उसमें पानी जमा ना हो।
1: याद रखना, बुखार में देरी
2: पड़ेगी भारी। संचारी रोग के बारे में अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर
1: 1800-180-5145 पर कॉल करें। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
0: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: भारत अभियान।
1: इस अभियान का नारा टीबी संबंधित भेदभाव को मिटाओ, देश को टीबी मुक्त बनाओ। एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपचार शुरू होते ही टीबी रोगी से दूसरों में बीमारी का संक्रमण बंद हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ मिलाने या टीबी रोगी के साथ समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए आप, जब टीबी की जांच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात। ना शर्माना, ना घबराना, टीबी की जांच करवाना। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से मिटाएं।
2: हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा।
1: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप,
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। HIV और टीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक HIV रोगी को टीबी होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर HIV संक्रमित व्यक्ति को टीबी होता है तो टीबी का रोग HIV को एड्स में तेजी से बदल देता है। टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करने पर HIV रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूँ कि हर HIV मरीज तुरंत टीबी की जाँच कराएं और सभी टीबी मरीज भी HIV की जाँच कराएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: Chan chan ka rakhe dhyan, TB Mukt Bharat Abhiyan.
2: जब सुरक्षित हैं वे लोग जिन्हें अधिक है टीबी होने की संभावना, तभी साकार होगी टीबी मुक्त भारत की कामना।
3: पहले से मौजूद स्वास्थ्य परिस्थितियां टीबी होने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। इस वर्ग में आप या आपका परिवार भी हो सकता है। इस समूह में आते हैं वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान या शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित
4: टीबी रोगी के साथ रहते हों,
3: मधुमेह रोगी, एचआईवी से पीड़ित लोग।
2: तो टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपनी जांच कराएं। अगर टीबी ना हो तो जरूरत पड़ने पर टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी से सुरक्षित हो जाएं, अन्यथा निशुल्क दवा और उपचार का लाभ उठाएं। आइए हम सब मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
5: ट्रीट एवरी टीबी पेशेंट बेस्ट एट द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी।
6: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
7: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हवा में फैलने वाला रोग है, जो बिना मुंह ढके खांसने से और इधर उधर बलगम थूकने से फैलता है। आप बलगम को कागज के टुकड़े में थूक कर जला सकते हैं, या एक राख भरे मटके में थूक कर जमीन में दबा भी सकते हैं। इससे रोगाणु फैलने का कोई डर नहीं होता। अपनी खिड़कियां खुली रखें, जिससे खूब सारी रोशनी और शुद्ध हवा अंदर आए। ऐसे वातावरण में टीबी रोगाणु ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते। और हाँ, अपने इलाज का कोर्स समाप्त जरूर कीजिए। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

को, तब ये नहीं बचा पाएंगे अपने आप को।

0: बात नहीं, अब मैं जाऊंगी उनके पास जो नहीं है तारा की तरह तैयार।
1: टीम तारा मच्छर आ रहे।

0: अगली बार हम सीखेंगे कि क्या करना है अगर आ जाए बुखार।
1: तब तक रहो तारा की तरह।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
4: बिल्कुल सोचा है पापा।
3: क्या सोचा है?
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
3: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
4: जी पापा।
3: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
4: हाँ पापा बिल्कुल।
5: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
6: So where are you? The world is here at Sharda University.
7: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।